मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई 2026। अभी सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। अभी सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए

0: डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6:05 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत से सजा कार्यक्रम वंदना।

आप सुन रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम वंदना, जहां संगीत बनता है श्रद्धा का माध्यम और भक्ति छू लेती है मन के हर कोने को। नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमित श्रीमाली। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

0: फरियाद।
1: हवेली संगीत केवल संगीत नहीं बल्कि मंदिरों की जीवंत परंपरा है, जहां सुरों के माध्यम से ठाकुर जी की सेवा की जाती है। अब हर कार्य शुभ कार्य शुरू करने से पहले जिनका स्मरण किया जाता है, उन विघ्नहर्ता गणपति बप्पा को प्रणाम करते हैं।

कृष्ण भक्ति का एक अलग ही आनंद है। कभी वे माखन चुराने वाले नंदलाल बन जाते हैं, तो कभी अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले योगेश्वर। उनकी हर लीला जीवन को प्रेम, कर्म और सच्चाई का संदेश देती है। अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं देवों के देव महादेव का ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम व्यू 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान का पाठ, उसके बाद खेती में आज मई माह के कृषि कार्य, सवेरे 7 बजे सदाबहार नगमे और 7:45 पर आप सुन पाएंगे सुगम संगीत, 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, समाचारों का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, 8:30 पर नमस्कार उदयपुर, प्रातः 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जाएंगे, 9:10 से नमस्कार उदयपुर निरंतर जारी रहेगा। साढ़े 9 बजे सुगम संगीत, 10 बजे शीर्षक गीत, 11 बजे से 11:30 तक शास्त्रीय संगीत का आनंद आप ले पाएंगे, 11:30 से 12 बजे तक सुगम संगीत, दोपहर 12 से 1 बजे तक फिल्म संगीत, दोपहर 1 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 1:05 पर आप सुनेंगे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम सही लियारी बाड़ी, 1:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, साथ में होगी विकास चर्चा, 2:15 पर दोपहर समाचार दिल्ली से प्रसारित होंगे, 2:30 पर कृषि जगत और दोपहर 3 बजे हिंदी में समाचार, सांध्यकालीन सभा में आप सुनेंगे युववाणी शाम 5 बजे, 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 से फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे और 6:30 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी।

और राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित होंगे। शाम 7 बजे खेती और घर किसान भाई बहनों का कार्यक्रम और 8 बजे फिल्म संगीत। 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से। उसके बाद सुगम संगीत। 9:30 अखिल भारतीय संस्कृति पत्रिका की जानकारी आप सुनेंगे दिल्ली से। 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। 11:00 हिंदी में समाचार, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार आप सुन पाएंगे।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। 6:40 होने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान का पाठ। संगीतकार सतीश भाटिया।

अपने दोनों शिष्यों श्रीराम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्रीराम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्रीराम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुधबुध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप, शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का पाठ। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। 6:50 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं खेती में आज मई माह के कृषि कार्य। वाचन स्वर नीता कोठारी।
1: खेती में आज कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाई बहना ने नीता कोठारी रो राम राम सा। किसान भाया आज बात करांगा अणी महीना अपने खेती बाड़ी रा कसा कसा काम करना है। ग्रीष्मकालीन गन्ना री वावणी जी किसान भाई कर रहा है तो भी अणी महीना में वावणी कर सके। हालांकि देखो अंडी पैदावार शरद और वसंत कालीन गन्ना कम वेवे, लेकिन कई गन्ना री फसल अणी महीना रे वास्ते उपयुक्त रहे। यो फसल पे निर्भर करे की आप वंडी पैदावार बढ़ावा रे वास्ते कसी किस्म रो चयन करना और कई संतुलित पोषण दे रहा। गन्ना री वावणी री बात करना तो देखो वावणी पहला गन्ना रा टुकड़ा ने 24 घंटा पानी में भिगोई ने रखना है। अंकुरण आने हव वेवे अणी टेम पे वावणी रे वास्ते कतारू कतार री दूरी 60 सेंटीमीटर लेनी है। गन्ना में वावणी लगभग 3 महीना रे केड़े 60-75 किलोग्राम नाइट्रोजन 130-163 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टर री ट्रॉप ड्रेसिंग कर देनी है। किसान भाया अगर गन्ना काटवा रे केड़े गन्ना री वावणी करनी है तो पले वो कर दीजो और पछे वावणी कर जो। किस्मारे चयन री बात करा तो गन्ना री COH 37 प्रजाति मई रा पहला सप्ताह तक लगाई सका या किस्म तेजी बढ़वा वाली है। अंडा गन्ना मोटा नरम और रसीला वेवे या कमजोर मिट्टी और सिफारिश की दी तक जो नाइट्रोजन है आधी मात्रा मंडी 320 क्विंटल पैदावार और 18-20% खांड अणु मिल सके। बत्ती बढ़तवार पे गन्ना पड़ जावे अणी वास्ते द्विमंगती विधि अन्न वावनी करनी चाहवे। मिट्टी चढ़ावारो और बांधवारो काम भी अपने निश्चित कर लेनो है। CO 1148 और COS 767 प्रजातियां सूखा सहनशील है। जटे पानी री कमी वे किसान भाया तो वटे अणा किस्मारी वावनी आप कर सका। मिट्टी चढ़ावारी बात करा तो अगर पौधा पे थोड़ा बड़ा वे गया वे तो मई में गन्ना में हल्की मिट्टी चढ़ाई देनी चाहे। अणी खरपतवार पे नियंत्रण तो वे गई लारे फसल भी पड़वम बच जाएगा। जल प्रबंधन रे वास्ते अणी टेम पे गन्ना री फसल पे विशेष ध्यान देवारी जरूरत है। खास तौर पाणत प्रबंधन पे आपने ध्यान देनो है। अणी महीना में बहुत गर्मी पड़वा तेज

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 7 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

सिलसिले, फिल्म का नाम किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़। अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म अजनबी से। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ों के साथ और संगीत किया है RD बर्मन ने।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
2: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
3: फिर ना कभी कहना।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: को
2: दीप तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: खो गया इंतजाम।
6: किसका?
5: गुड्डी की फीस का।
6: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
7: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा अभी आपने सुना फिल्म कभी कभी से। अगला नगमा है फिल्म साथ साथ से, जगजीत सिंह की आवाज़ और कुलदीप सिंह का संगीत।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कटी पतंग फिल्म से अभी जो नगमा आप सुन रहे थे उसे गाया था किशोर कुमार ने, और अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म आनंद से, मुकेश की आवाज़ और सलिल चौधरी का संगीत।
1: मैंने

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें,
2: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

0: वे साय तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

आर डी बर्मन के संगीत से सजी ये नगमा अभी आपने सुना, दो लफ्ज़ों की है अपनी कहानी, और इसे गाया था आशा भोसले, शरद कुमार और अमिताभ बच्चन की आवाज़ के साथ, और कंपोज किया है आर डी बर्मन ने। द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का नाम है। अब सदाबहार नगमे का आखिरी नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो है शोर फिल्म से, मन्ना डे महेंद्र कपूर और श्याम चितर की आवाज़ में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार नगमे, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनेंगे इंग्लिश में मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा।

0: ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
5: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में

0: कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग एक साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वाशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह सेफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी यह परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है, सरकार ने इस दिशा में

0: कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी सुरक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रूपये महंगे, सीएनजी के दाम 2 रूपये बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: वक्त ही गिरना सिखाता, वक्त ही चलना बताता, जो हारते हुए भी हंस लेता है वक्त उसको जीत दिलाता। रुकना अगर गुनाह लगे तो आगे बढ़ते जाना तुम, वक्त की इस पाठशाला में हर दिन एक नया सबक पाना तुम। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज़ करते हैं उदयपुर के दैनिक और आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का। और आज के इस अंक में आपके रेडियो सेट पर मैं हूं अमित और मेरे साथ हैं,
1: मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त शमील।
0: और इसी के साथ हम आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार भेजते हैं।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही हम बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, क्योंकि आज शनिवार है और आज वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले वीकेंड की शुरुआत में हम बात करेंगे शांतिपूर्वक सहजीवन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के बारे में।
1: बिल्कुल, दूसरे सेगमेंट की बात करें तो फॉय कॉन रूट यानी लोकखोर परंपरा की बात करेंगे और इसमें आज हम बात करेंगे विवाह संस्कारों में लोक गीतों की भूमिका के बारे में।
0: बिल्कुल, और साथ ही होगी स्थानीय खबरें और आईपीएल की अपडेट। उसी के साथ में एंटरटेनमेंट लॉज में हम बात करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों के सुनहरे सफर के बारे में।
1: बिल्कुल, और अवेयरनेस के बारे में जानकारी हम आपको देंगे और बातचीत का विषय होगा हमारा युवाओं के लिए बजट फ्रेंडली ट्रेवल टिप्स।
0: तो जानकारियां बहुत सारी है और मनोरंजन भी, बने रहिए आकाशवाणी उदयपुर के साथ।

0: क्योंकि गर्मी की छुट्टियां पड़ गई है, और गर्मी की छुट्टियां ऐसी छुट्टियां होती है जिसमें हम अपने ज़माने में तो काफ़ी मज़े किया करते थे, काफ़ी पेड़ पौधे हुआ करते थे तो हम घूमने निकल जाया करते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा गर्मी है, तपिश है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो सरकार है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, उन्होंने बच्चों के लिए कुछ प्लानिंग्स की हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि बच्चे जो गणित में कमज़ोर हैं उनके लिए इस समर वेकेशन में एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएंगी, उनको श्रुति लेख यानी कि हैंड राइटिंग सुधार के लिए कुछ सेशंस दिए जाएंगे, तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है।
1: बिल्कुल, स्थानीय खबरों की हम बात कर रहे हैं। स्थानीय खबरों में जैसा कि अभी आपने कहा कि गर्मी के जो तेवर हैं वो बड़े तीखे हैं, और इस समय महाराणा प्रताप खेलगांव के स्विमिंग पूल में क्लासेस जो हैं कक्षाएं चल रही हैं, यानी वहाँ पे स्विमिंग सिखाई जा रही है। यहाँ का माहौल इस वक्त पूरी तरह बदल गया है, बच्चे तैरना सीख रहे हैं, साथ ही वो इस समय गर्मी से भी राहत पा रहे हैं, और बच्चों के उत्साह को देखते हुए यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बच्चों के प्रोफेशनल कोच की देखरेख में सुरक्षित तरीके से तैराकी सिखाई जा रही है।
0: बिल्कुल, और खबरों की बात करें तो उदयपुर से न्यू जलपाईगुड़ी सहित राजस्थान की 3 ट्रेनें प्रभावित होंगी क्योंकि काम चल रहा है, और ये जो ट्रेनें हैं ये जिन मार्गों पर फेरबदल किया है उसमें अजमेर किशनगढ़ एक्सप्रेस आगामी 8, 9 और 11 जून को प्रभावित रहेगी। उसके बाद में अगली जो ट्रेन है वो है कामाख्या भगत कोठी की एक्सप्रेस, जो 12 जून को अपने नियमित मार्ग की बजाय पाखावली ठाकुरगंज से होकर संचालित की जाएगी। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार स्केड्यूल फिर से चेक कर लें।
1: बिल्कुल, स्थानीय खबरों में हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन शिविर की, और भारतीय लोक कला मंडल में 1 माह का ग्रीष्मकालीन शिविर शुरू हो गया है, और इसमें बच्चों और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है लोक कलाओं के बारे में। इस शिविर में लोक नृत्य, लोक गीत, लोक वादन और दस्ताना पुतली निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: बिल्कुल, और साथ ही

0: करें तो बागोर की हवेली में छाया चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है जो सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी, तो जो भी कला प्रेमी हैं वहाँ जा सकते हैं।
1: बिल्कुल, टखमन 28 की ओर से राज्य छात्र कला प्रदर्शनी 2026 की प्रदर्शनी और पुरस्कार वितरण समारोह आगामी 26 मई को होगा। राजस्थान के लगभग हर ज़िले के कला महाविद्यालय और संस्थानों के विद्यार्थियों ने अपनी कलाकृतियाँ भेजी है, जिससे यह राज्य स्तरीय युवा कला अभिव्यक्ति का भी एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है।

0: ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना, और हम हमेशा कहते हैं अमित कि अपनी सेहत का हमें ख्याल रखना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और अगर साफ बात सेहत की हो तो खेल से जुड़े रहना अपनी सेहत को अच्छा बनाए रखने में कितना अच्छा होता है।
1: बिल्कुल, मैं आपका इशारा बिल्कुल समझ रहा हूँ। और अब हम खेल जगत पे बात करेंगे।

0: तो शमिल, कल के आईपीएल मैच की अगर हम बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में बहुत ही शानदार मैच रहा, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई को 7 विकेट से हराया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 187 रन का लक्ष्य दिया और टीम की ओर से कार्तिक शर्मा ने 71 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसके अंदर उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए। और जवाब में जब लखनऊ की शुरुआत तो काफ़ी दमदार रही और मिशेल मार्श ने केवल 38 गेंदों में 90 रन बनाकर मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया और लखनऊ ने 188 रन का लक्ष्य मात्र 16 ओवर और 4 गेंदों में ही प्राप्त कर लिया।
1: बिल्कुल, मात्र 7 विकेट खोकर लखनऊ ने चेन्नई को हरा दिया और मार्श प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए। बिल्कुल अमित, हम बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की, और आज है आईपीएल के 19वें सीजन का 60वां मैच, और ये मैच आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच ईडन गार्डन पर खेला जाएगा। समय शाम को 7:30 पर यह मैच शुरू होगा।

0: तो प्यारा सा गीत हमने अपने श्रोताओं को सुनाया। अमित, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के दिवस की बात करते हैं, यानी दिन विशेष की बात करें तो आज है 16 मई और आज पूरी दुनिया में शांतिपूर्वक सहजीवन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य अमित यही है कि सभी के बीच में प्रेम हो, भाईचारा हो, सहिष्णुता हो और आपसी सम्मान की भावना बनी रहे।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आज के समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष, हिंसा, नफरत, असहिष्णुता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तब ये दिवस हमें याद दिलाता है कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने, स्वीकारने और मिलकर आगे बढ़ने की भावना का नाम है।
0: बिल्कुल, आज के दिन का जो मनाने का उद्देश्य है वो यही है और ये दिन यही संदेश देता है कि भाषा हो या संस्कृति या आपके विचारों में भिन्नता हो सकती है, उसके बावजूद हम सब एक मानव परिवार का हिस्सा है। यदि समाज में संवाद, सहयोग और संवेदनशीलता बनी रहेगी तो कई समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से निकल सकता है।
1: बिल्कुल, हर वर्ष इस दिवस की कुछ न कुछ थीम रखी जाती है और इस वर्ष यानी कि 2026 की थीम है लिविंग टुगेदर इन पीस, बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू डायलॉग, इंक्लूजन एंड रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि संवाद, समावेश और मेल मिलाप के माध्यम से विश्वास का निर्माण करना।
0: बिल्कुल अमित, और देखो तो ये थीम भी हमें यही बताती है कि शांति की शुरुआत हमेशा विश्वास से होती है। जब समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिलता है तो एक दूसरे की बात को सभी सुनते हैं और आपसी मतभेदों को बातचीत से ही सुलझा लेते हैं और तभी वास्तविक शांति स्थापित होती है।
1: आज की वैसे भी ये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने घर पर, विद्यालय में, कार्यस्थल और समाज में छोटी छोटी सकारात्मक पहल करें। इसके लिए सबसे ज़रूरी है सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना, भेदभाव से दूर रहना, प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना, क्योंकि शांति केवल सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये हम सभी की साझी जिम्मेदारी है।
0: ये सुनवाते हैं।

0: तो शमील, आगे का कार्यक्रम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करते हैं, वो है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। हर वर्ष 16 मई को पूरी दुनिया ये दिवस मनाती है, जिसे हम इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। ये दिवस विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और सतत विकास में प्रकाश की भूमिका को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल सही बात है अमित, हम ये कहेंगे कि रोशनी ज्ञान, ऊर्जा और जीवन का प्रतीक भी है। जहाँ पर सूरज की किरणों से लेकर बिजली के बल्ब तक, मोबाइल स्क्रीन से लेकर चिकित्सा के उपकरण तक, जीवन में रोशनी हमारे हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: और इस दिवस की शुरुआत यूनेस्को द्वारा 2018 में की गई थी। 16 मई की तारीख चुनने के पीछे एक खास कारण है, वो ये है कि इसी दिन 1960 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक थियोडोर मेनन ने पहली बार सफल लेजर का प्रदर्शन किया था। लेजर तकनीक आज चिकित्सा, संचार, उद्योग और विज्ञान की क्रांति, विज्ञान में क्रांतिकारी बदलाव ला चुकी है। शमील,
1: बिल्कुल, इस साल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का जो मुख्य संदेश है वो अमित अपने श्रोताओं को बताते हैं, लाइट फॉर इनोवेशन, साथ ही हम कहेंगे इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी नवाचार, सतत विकास और मानव प्रगति के लिए प्रकाश।
0: बिल्कुल, और ये संदेश हमें याद दिलाता है कि प्रकाश आधारित तकनीकें जैसे कि सौर ऊर्जा, फाइबर ऑप्टिकल और ऊर्जा सक्षम उपकरण भविष्य को अधिक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, आज जब दुनिया ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, तब इस वक्त स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है। सौर ऊर्जा इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जो प्रकृति से मिलने वाला स्वच्छ प्रकाश है।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर, आकाशवाणी उदयपुर के FM और मीडियम वेव दोनों ही चैनल पर एक साथ। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना करेंगे। स्वयं गणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज, जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

0: समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात से नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उन्होंने आबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: नीदरलैंड्स के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल राज उन्नति की बैठक में 33,039 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रोजेक्ट्स को तय टाइमलाइन के अनुसार पूरा करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले की पीने के पानी से जुड़ी शिकायतों को तत्परता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राष्ट्र हित में ईंधन की बचत और ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द ई बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संबंधित शहरों में डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने के काम को पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा सहित अन्य प्रमुख शहरों में ई बसें चलाई जाएंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद जयपुर में इस महीने होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को स्थगित कर दिया गया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एनटीए ने पिछले 24 घंटों में देश भर में अनेक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मामले में अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एसआई भर्ती 2021 परीक्षा 20 सितंबर को दोबारा होने जा रही है। इसके लिए अभ्यर्थी आज से 30 मई तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पते को अपडेट कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस परीक्षा में वही 3,83,097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे जो पहले दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इस परीक्षा में अवसर नहीं दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में आज से प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। 14 जून तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। प्रगणक मकान की निर्माण सामग्री और सुविधाओं को लेकर 33 सवाल पूछेंगे। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशक विनेश सिंघवी ने बताया कि प्रदेश में 1 मई से शुरू हुआ स्वयं गणना का काम कल पूरा हुआ। इसमें राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों ने खुद अपनी सूचनाएं दर्ज कराने के विकल्प का उपयोग किया है। आज शनि जयंती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, हवन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर 12 जिले के सीताबाड़ी में मेला भर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मेला सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है।
2: आदिवासी लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध सीताबाड़ी के धार्मिक मेले का शुभारंभ आज होगा। ये मेला सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसे सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है। ये मेला ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार ये वही पवित्र स्थान है जहाँ माता सीता ने निर्वासन के दौरान वाल्मीकि आश्रम में निवास किया था। ये मेला रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ 7 पवित्र कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूरज कुंड आदि है, जिनमें ज्येष्ठ अमावस्या को स्नान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जहां लवकुश का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यहां समुदाय अपनी परंपराओं का जश्न मनाता है और उनके पारिवारिक विवाह भी होते हैं। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12।
0: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इसका उद्देश्य मॉनसून से पहले डेंगू रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना और मच्छरों के नियंत्रण के प्रयास करना है। ये बीमारी एडीज मच्छर के काटने से होता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मच्छरों के नियंत्रण के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि समय पर पहचान और इलाज नहीं मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
3: विश्व डेंगू दिवस पर आप सभी से अपील है कि डेंगू से बचाव के लिए सजग रहें, अपने घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें, कूलर, गमले और टंकियों की नियमित सफाई करें, पूरी बांह के कपड़े पहने और मच्छरदानी या रिपेलेंट का उपयोग करें। याद रखें, डेंगू का इलाज नहीं, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। आइए मिलकर स्वच्छता अपनाएं और डेंगू मुक्त समाज बनाएं।
0: राज्य में कल से तापमान में बढ़ोतरी और हीट वेव का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। पिछले 2-3 दिन से कई हिस्सों में जारी आंधी बारिश से पारे में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है।

0: गर्मी के कल से फिर जोर पकड़ने के आसार हैं। इस बीच कल फलौदी और चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया। अन्य स्थानों पर पारा सामान्य के आसपास या उससे नीचे रिकॉर्ड हुआ। वहीं जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग तथा शेखावटी अंचल में कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। आईपीएल क्रिकेट में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रात चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। 38 गेंद में 90 रन की पारी खेलने के लिए मिशेल मार्श को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना करेंगे। स्वगणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज, जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमित और मेरे साथ हैं
2: शमील। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अमित।
1: बिल्कुल। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विवाह संस्कारों में लोक गीतों की भूमिका। जैसा कि शमील हम जानते हैं, भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर हर चीज़ के लिए गाने और गीत बनाए जाते हैं। सुख में, दुख में, फसल लगाते समय, फसल काटते समय, हर एक चीज़ का गीत हमें मिल जाता है। और भारतीय संस्कृति में विवाह अगर हम देखें तो वो दो परिवारों का, दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि संस्कृति परंपराओं के मिलन का भी उत्सव है। इस विवाह संस्कारों को जीवंत और भावनात्मक बनाने के लिए लोक गीतों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
2: बिल्कुल सही बात है। विवाह की हर रस्म, जैसे कि हल्दी हो, मेहंदी हो, बारात का स्वागत हो, फेरे हो या विदाई समारोह, सभी के वक्त के लिए अलग अलग लोक गीत गाए जाते हैं। ये गीत मनोरंजन का साधन तो है ही, साथ ही इनमें समाज की भावनाएँ, रिश्तों की मिठास और लोक जीवन की झलक भी दिखाई देती है।
1: भारत के अलग अलग राज्यों में विवाह गीतों की अपनी अलग पहचान है। राजस्थान की बात करें तो बन्ना बनी, बिहार और उत्तर प्रदेश में सोहर और गारी गीत, पंजाब में गिद्दा और सुहाग, बंगाल में मंगल गीत गाए जाते हैं। ये गीत पीढ़ियों से मौखिक परंपरा के रूप में आगे बढ़ते आ रहे हैं।
2: बिल्कुल। लोक गीत विवाह समारोह में खुशी और अपनापन बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा मित्र के महिलाएं जो हैं वो समूह में लोक गीत गाती हैं और वातावरण को एकदम उत्साहपूर्ण बना देती हैं। कई गीतों में हास्य और छोटी हल्की फुल्की छेड़छाड़ भी होती है जो कि रिश्तों में सहजता और प्रेम पैदा करती है। वहीं पर विदाई के गीत भावनात्मक रूप से होते हैं जो कि बेटी को अपने घर से विदा करने के दर्द को भी व्यक्त करते हैं।
1: शमील, लोकगीतों की एक और खास बात होती है और वो ये खास बात है कि वो अपने समाज की संस्कृति और भाषा को सहेज कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। बदलते समय में आधुनिक संगीत का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन आज भी विवाह समारोह में लोक गीत आत्मा की तरह नजर आते हैं।
2: बिल्कुल, ये कहा जा सकता है अमित के विवाह संस्कारों में लोक गीत केवल गीत नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और भावनात्मक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है।

0: तो अमित, हम बात करते हैं अब आकाशवाणी के 90 वर्षों के सुनहरे सफर के बारे में, उस आवाज के बारे में जिसने दशकों से देश के हर कोने को जोड़ रखा, उस माध्यम की जिसने समाचार, संगीत, संस्कृति और जन जागरूकता को घर घर पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो की, जिसके 90 वर्षों का यह सफर भारतीय प्रसारण इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है।
1: बिल्कुल शमिल, और ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि हम इस स्वर्णिम अध्याय के कुछ चैप्टर्स लिखने में आकाशवाणी के साथ हैं। और आज जब दुनिया बहुत ही तेजी से डिजिटल माध्यमों की तरफ बढ़ रही है, तब भी आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता, आत्मीयता के कारण लोगों के दिलों में खास स्थान रखती है। FM, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, मोबाइल ऐप के माध्यम से ये नई पीढ़ी तक भी अपनी पहुंच बना रही है। आकाशवाणी के ये 90 वर्ष किसी केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, बल्कि हमारे भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक चेतना का इतिहास है।

0: का सपना होता है, और घूमने से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिसने घाट घाट का पानी पिया है, और ऐसी जो कहावतें हैं, मतलब जो ज़्यादा ट्रैवल करता है वो काफ़ी लोगों से मिलता है, तौर तरीके सीखता है, तो काफ़ी सुंदर चीज़ है। और नई जगह देखना, नए लोगों से मिलना, नए जीवन का अनुभव हमें और खूबसूरत बना देता है। लेकिन अक्सर हमें ये लगता है कि इस तरह से ट्रैवल करना काफ़ी महंगा है, तो आज क्या आपके पास कुछ टिप्स हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं?
1: बिल्कुल सही योजना और कुछ अच्छी टिप्स अपनाकर हम कम बजट में भी शानदार यात्रा कर सकते हैं। अमित, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कुछ आसान और बजट फ्रेंडली ट्रैवल टिप्स की बात करें तो सबसे पहली बात, पहले से योजना बनाना बेहद ज़रूरी है।
0: जी
1: अगर आप ट्रेन से, बस से, फ्लाइट की टिकट पहले बुक करते हैं तो खर्च काफ़ी कम हो सकता है, और ऑफ सीजन में यात्रा करते हैं तो ये भी सस्ता और आरामदायक रहता है। महंगे होटलों की जगह हॉस्टल या होम स्टे चुनें तो आपका जो है बजट वो कम हो सकता है।
0: बिल्कुल। और अगली बात करें तो आप कोशिश करें टैक्सी लेने की बजाय प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की जगह आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें, जैसे कि मेट्रो हो गई, बस हो गई, या फिर जो अभी चल रहा है आप कॉमन एक टैक्सी भी ले सकते हैं, 3-4 लोग इकट्ठे होके, तो वो आपका जो फेयर है वो स्प्लिट हो जाएगा सभी में, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें देख भी सकते हैं।
1: बिल्कुल, खाने पीने में बहुत खर्च ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट की जगह आप स्थानीय स्ट्रीट फूड या छोटे ढाबों का भी स्वाद लें। इससे खर्च में कटौती होगी और उससे जगह का जो असली स्वाद है वो भी आपको मिल पाएगा।
0: बिल्कुल। और अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रैवल की बात करें तो अपना जो बैकपैक है या आपका जो सामान है उसको जितना हल्का रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और कोशिश करें कि यात्रा के दौरान आप अनुभवों को महसूस करें, ज़्यादा फ़ोटो लेने के चक्कर में आप ज़्यादा चीज़ें नहीं देख पाएंगे, तो थोड़ा सा आप इस तरह से घूम सकते हैं, और डिजिटल पेमेंट के साथ साथ थोड़ा सा कैश भी अपने साथ रखें।
1: बिल्कुल, तो इन बातों का अगर ख्याल रखेंगे तो कम खर्च में आप ट्रैवल कर पाएंगे और काफ़ी अच्छा महसूस कर पाएंगे। अच्छा, ट्रैवलिंग करते हैं तो अमित, हमें एक चीज़ अपने श्रोताओं को जरूर बतानी होगी कि पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति का सम्मान हमेशा करें, साफ
0: जी
1: सफाई बनाए रखें, और जिम्मेदार जो नागरिक है वो भी आपका बना रखना इसमें बेहद ज़रूरी है। अच्छा, हम बात करते हैं आज के दिन की, तो आज जो है अमित वो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस।
0: बिल्कुल
1: तो आज के दिन की अगर बात करें तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस को मनाने का उद्देश्य यही होता है कि लोग डेंगू बुखार के लक्षण, इसके बचाव के उपाय और मच्छरों को पनपने के रोकने के लिए जितने भी उपाय हैं वो ज़रूर करें। मानसून के मौसम से पहले डेंगू के प्रकोप को रोकना और आम जनता में इसके लिए सतर्कता बढ़ाना आज के दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, हम चाहते हैं और भी बातें करना, लेकिन अब वक्त का इशारा है कार्यक्रम से विदा लेने का। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त शमील
0: और मैं अमित,
1: दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

तो शमील, अगर हम बात करें ट्रैवल की, तो बहुत सारे लोग ट्रैवल पर इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि उन्हें लगता है बहुत खर्चीला है। तो आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी बातें जिनके माध्यम से आप कम खर्च में या बजट फ्रेंडली ट्रैवल कर सकते हैं। तो देखा जाए तो घूमना फिरना हर किसी

अभी आप सुन रहे थे नमस्कार उदयपुर, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। अभी 9:30 हो चुके हैं, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत की पहली गजल है तलत अजीज की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे तुम्बिल फिल्म से जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। अगली गज़ल हम लेकर आए हैं पंकज उदास की आवाज़ में आफरीन से।

अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, और अगली गज़ल जो है वो गाई है गुलाम अली साहब ने, और फिल्म का नाम है निकाह।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। मीडियम व्यू 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 10 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत।

शीर्षक गीत सुनने वाले सभी साथियों को आपके रेडियो दोस्त अमित श्रीमाली का प्यार भरा नमस्कार। और आज के शीर्षक गीत में हम जो शीर्षक लेकर आए हैं उससे जुड़े हुए नगमे आपको हम सुनवाएंगे। और आज का शीर्षक है कल। जी हाँ, कल, बीता हुआ कल या आने वाला कल, और उसी से जुड़े हुए नगमे हम आपको सुनवाएंगे, जिसमें से पहला नगमा पेश खिदमत है।

अभी जो नगमा आपने सुना उसे गाया था लता मंगेशकर ने, और अगला नगमा हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म स्टंट मैन से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में और नदीम श्रवण का संगीत।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: आरबीआई कहता है
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

अभी आप सुन रहे थे शॉर्टकट फिल्म का नगमा अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में। अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है अमित कुमार की आवाज़ में सनम फिल्म से, और संगीत है आनंद मिलिंद का।

अभी जो नगमा आप सुन रहे थे वो था लता मंगेशकर की आवाज़ में सम्राट फिल्म से। अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म सैलाब से, और इसे गाया है अनुपमा देश पांडे ने, संगीत है विशाल शेखर का।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ नाम फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे गाया है मनहर उदास ने। अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म प्लान से, कुमार सानू और श्रेया घोषाल की आवाज़, संगीत है आनंद राज आनंद का।

अभी आप सुन रहे थे कल हमारा है फिल्म से ये नगमा, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी और सुधा मल्होत्रा ने। अगला नगमा है मेला फिल्म से इला अरुण की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे इला अरुण की आवाज़ में ये गाना। और अगला नगमा जो कि इस कार्यक्रम का आखिरी गीत भी है, वो हम लेकर आए हैं फिल्म कल होना हो से।

सोनू निगम की आवाज़ में और शंकर एहसान लॉय का संगीत। और इसी नगमे के साथ दीजिए अपने रेडियो दोस्त अमित को इजाज़त। नमस्कार।

हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी। बिल्कुल हाँ, ये जो लाख सवारू पागल दिल को दिल धड़की ही जाए, ये दिल का कुछ बात ही ऐसी है, कभी धड़कता है, कभी मासूम सा होता है और कभी इन अनजान रास्तों पे बहुत कुछ हमें बता देता है। शीर्षक गीत पर आधारित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आरजे अमित के साथ, और अब आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत। सवेरे के ठीक 11 बजे हैं और अब आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत में बेहतरीन राग, राग जौनपुरी। वेंकटेश कुमार गायकी के साथ हैं, भरत कुमार तबले पर हैं, अजय जोगलेकर हारमोनियम पर हैं,

0: इंदौर से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: है।
2: दीप तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: खो गया इंतजाम।
6: किसका?
5: गुड्डी की फीस का।
6: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
7: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: शास्त्रीय संगीत में आज आपने सुनी राग चौनपुरी। वेंकटेश कुमार गायकी के साथ थे, भरत कुमार तबले पर थे और अजय जोगलेकर हारमोनियम पर। आप थे RG एकता के साथ।

तो अब कड़ी में ठीक 11:30 हो चुके हैं और अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत में चंद गज़लें। पहली गज़ल जगजीत सिंह, आशा भोसले, गुलाम अली साहब और शुभा मुदगल की आवाज़ों में। सुनते हैं ये गज़ल।

पंकज उदास की गाइज आपने गज़लें सुनी। अब आपको एक और गज़ल सुनवाते हैं जकी सिंह, आशा भोसले, गुलाम अली साहब और शुभा मदगिल की आवाज़ों में झुकी झुकी सी नज़र।

0: झुकी झुकी सी नज़र, गज़लों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आइए सुनते एक संदेश और उसके बाद तलत अजीज की आवाज में एक प्यारी सी गजल सुनेंगे।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

सुगम संगीत में बेहतरीन गजलें अभी आपने सुनी, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। आप थे आरजी एकता के साथ और अब जुड़े रहें आरजी एकता के साथ, क्योंकि अब आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में बेहतरीन गीत। पहला गीत पेपोन और श्रद्धा मिश्रा की आवाज़ों में फिल्म शिकारा से।

बेकअप सेट फिल्म से अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और बेहतरीन सा गीत फिल्म संगीत के कार्यक्रम में, ए दिल है मुश्किल फिल्म से अजीत सिंह की आवाज़ में।

ऐ दिल है मुश्किल फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत का, आप है आरजे एकता के साथ, और अब आपको सुनवाते हैं रशीद अली और वसुंधर दास की आवाज़ में जाने तू या जाने ना फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

जाने तू या जाने ना फिल्म से अभी आपने ये बेहतरीन सा गीत सुना। सचिन टंडन की आवाज़ में एक और प्यारा सा गीत सुनवाते हैं। आवाज़ सचिन टंडन की है और फिल्म का नाम कबीर सिंह।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फिल्म संगीत कार्यक्रम एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं, बचना ए हसीनो फिल्म से। KK और शिल्पा राव की इसमें आवाजें हैं, बड़ा ही प्यारा गीत है, आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, आप एक से एक बेहतरीन नगमे सुन रहे हैं। सोनू निगम और गायत्री अय्यर की आवाज़ में बल्ले बल्ले अमृतसर 2 LA फिल्म से ये गीत।

भले भले अमृतसर टू LFM से ये गीत अभी आपने सुना। अगला गीत लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म सी सोहम की आवाज़ में, सोनू और BNG एंटरटेनमेंट्स की आवाज़ों में ये गीत।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। आप थे आरजी एकता के साथ और अब जुड़ेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से और वहां से हम सुनेंगे।

0: प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे। विभिन्न आयु वर्ग, क्षेत्रों और धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय समुदाय के सदस्य पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी समुदाय की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में आज से प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। 14 जून तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। प्रगणक मकान की निर्माण सामग्री और सुविधाओं को लेकर 33 सवाल कर रहे हैं। उधर झुंझुनू में आज विधायक राजेंद्र भांबू ने जनगणना टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री भांबू ने कहा कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का काम है। पहले चरण की जनगणना का मूल निवास से कोई संबंध नहीं है। जहां लोग वर्तमान में रह रहे हैं उन्हें वहीं पर जनगणना में शामिल होना चाहिए। उन्होंने लोगों से प्रगणकों का सहयोग करने की अपील की। इस बीच प्रदेश में 1 मई से शुरू हुआ स्वगणना का काम कल पूरा हुआ। इसमें राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों ने खुद अपनी सूचनाएं दर्ज कराने के विकल्प का उपयोग किया है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से इस बीमारी की रोकथाम के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जागरूकता बढ़ाना और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण और चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूती से जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्वच्छता, सतर्कता और समय पर इलाज को डेंगू से बचाव के प्रभावी उपाय बताया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वस्थ और स्वच्छ राजस्थान के निर्माण में सहभागिता निभाने का आग्रह किया है। हनुमानगढ़ जिले के खेतों में फिर से सफेद सोना यानी नरमा की फसल लहलाएगी। कृषि विभाग ने सीजन के लिए 1,85,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नरमा बुवाई का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 65,000 हेक्टेयर अधिक है। पिछली बार गुलाबी सूंडी कीट के प्रकोप से फसल को हुए नुकसान को देखते हुए इस बार प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत 19 प्रमाणित कंपनियों के बीटी कॉटन बीजों को ही मान्यता दी गई है। और अब मौसम। राज्य में अगले 1-2 दिनों में गर्मी दोबारा से प्रचंड रूप ले सकती है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। इससे हीट वेव का असर फिर देखने को मिल सकता है। वहीं पिछले 2-3 दिनों से कई स्थानों पर जारी आंधी बारिश की गतिविधियों से लोगों को हीट वेव से राहत मिली है। कई शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ, जो सामान्य से कम है। हालांकि उमस और गर्मी का असर बना हुआ है। उधर फलौदी और चित्तौड़गढ़ में कल अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार मापा गया। उदयपुर और कोटा में दिनभर गर्म हवाओं का असर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज 6 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट बताया गया है। राजधानी जयपुर में भी बादल छाए रहने और अंधड़ की संभावना है। आज शनि जयंती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, हवन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर बारां जिले के सीताबाड़ी में मेला भर रहा है।

0: ये मेला सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है। वहीं अनेक महिलाएं वट सावित्री का व्रत कर रही हैं। इस अवसर पर वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं को लेकर एक नोटिस जारी किया है। इसमें सीबीएसई ने कहा है कि अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं होने वाले छात्र छात्राओं को दो चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का फायदा ले सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। सुनते हैं कार्यक्रम सहेलियारी बाड़ी।

0: राम राम सरजू बैसा, राम राम।
1: राम राम पूजा बैसा, राम राम।
0: सहेलियारी बाड़ी कार्यक्रम हुणवा वाली हंगली बेना ने आपणो राम राम सा। देखो बैसा, कार्यक्रम में आया हाँ तो आपने भी हंगली बेना देखो काम हो निपटी न रेडियो सेट रे अड़े भड़े आएगी है। चंदा बैसान, लता बैसान, रतन बैसान वे वाट नाल रही है कि आज आपने कार्यक्रम रे महीने सहेलियारी बाड़ी रे पिटारा रे महीने कई कई जानकारी लाया हो। तो सब पहला विचार वाली बात में बैसा कई जानकारी लाया हो।
1: देखो सा, जटे आपा सहेली रिवाड़ी कार्यक्रम में आया हाँ और आपणी बहना रे वास्ते नत नवी जानकारियां लाया हाँ, तो आज सब पहला आपणी बहना ने जानकारी करावा कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण महिला जो है वणारी सुरक्षा कणी तरीकों वे सके, तो अणी बारे में आज जानकारी लेने आया हाँ सा।
0: वैसा घनी बढ़िया जानकारी लाया हुआ आप, और आत्मरक्षा प्रशिक्षण अपनी बहना रे वास्ते शारीरिक सुरक्षा, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण रो एक बहुत बड़ो आवश्यक साधन है। जो कि वणा ने आपातकालीन स्थिति अभी कहवा कि कोई भी कई भी स्थिति कटे कहीं नहीं आवे, वे केवल अपनी रक्षा करवा में सक्षम वणावे बल्कि वणा ने मानसिक रूप भी घनी मजबूत वणावे है सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो सा कि जटे महिला सुरक्षा और आपा अणा रक्षा री मुख्य पहलू री बात जटे करा तो अणी रे में देखो सशक्तिकरण और आत्मविश्वास, जटे आत्मरक्षा तकनीक सीखवा रो महिला रा जो है कि आत्मविश्वास बढ़े है। जण्यू कही वेगा कि बिना डरू समाज रे महीने जो महिला है वे आपणी भागीदारी जो है बखूबी निभाई सकेगा सा।
0: हाँ जी बात कह रहा हो भाई सा। और अंडे आगे अगर देखा तो देखो अंडे महीने व्यवहारिक तकनीका भी आवे कि देखो सा क्राव माजा जैसी जो विधा है अंडे महीने शामिल है, जो कि खतरनाक स्थिति रे महीने भी देखा कि आपणी जो बेना है रात वरत देखो नौकरी करे आवे देखो दूर दराज भी जावे है, तो अगर वे आत्मरक्षा प्रशिक्षण ले लेगा तो अगर वणा ने देखो सा कोई भी ऐसो हमलो है तो वे अणी खतरनाक स्थिति में भी हमलावार ने जल्दी निष्क्रिय कर सकेगा। और वे अगर ऐसी व्यवहारिक तकनीका सीख जाएगा तो वे देखो सा आत्मविश्वास वे खुद आपनो सामनो वे खुद कर सकेगा सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो जटे परिदृश्य जागरूकता री आपा बात करा तो यह जो प्रशिक्षण सिखावे है कि आपने आसपास रा माहौल रे प्रति सचेत रहनो है, संभावित खतरा ने अपने भापी ने वणियो हमेशा हमेशा वास्ते दूर रहनो है, अने इस लारे जटे एक मानसिक मजबूती री आपा बात करा कि जटे शारीरिक शक्ति है तो या डर पे विजय पावा रे वास्ते संकट रे समय शांत रहवा रो और सही फैसलो लेवा रे वास्ते तो मानसिक शक्ति प्रदान करे है, तो अणी वास्ते पूर्ण रूप हूँ अपनी बहना ने आपणो यूज कहणो है कि मानसिक मजबूती बहुत ही जरूरी है हर एक महिला रे महीना।
0: और वैसा जटे आप आत्मरक्षा प्रशिक्षण री बात कर रहे हाँ, जटे बहना बेना जो है अपनी सुरक्षा रे वास्ते आत्मरक्षा प्रशिक्षण ले रही लेवे तो अंडा कई कई लाभ है ये भी बतावा कि सब पहला स्वयं री रक्षा, ये अपनी बेना रे वास्ते कदी भी अप्रिय घटना या हमला री स्थिति रे महीने शारीरिक रूप प्रतिशोध करवा रे वास्ते सक्षम बनावे है और वणा ने खुद आत्मबल और आत्मविश्वास बना रे महीने पैदा वे भे सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो मानसिक सतर्कता री बात करा तो ये जीवन रे हर क्षेत्र में निडरता सतर्कता री भावना विकसित करे।

0: तो सरजू भैसा, कतरो बढ़िया गीत हुणायो अपने बेना ने। और अबे देखो, उद्योग की जानकारी अपने बेना ने अपने कार्यक्रम में महीने करावा। हाँ, तो आज आप बतावांगे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि वेगी, पशुपालन वेगिया, मछली पालन वेगिया, अणव प्राप्त कच्चा माल ने प्रसंस्कृत कर उपभोग योग्य मूल्यवर्धित और अधिक समय तक चालवा वाला खाद्य उत्पाद में बदल वाली प्रक्रिया है सा। और यो कृषि बर्बादी ने कम करवाने, किसान भाई री आय बढ़ावाने और रोजगार सृजन रे लारे भारत रे कुल खाद्य बाजार रे महीने 32% हिस्सेदारी भी राखे है सा।
1: बिल्कुल सा। तो देखो पूजा भैसा, मुख्य बात बतावा आपा कि प्रसंस्करण रा जो स्तर है, तो प्राथमिक सफाई, ग्रेडिंग, द्वितीयक और दाल बनाणो, और अणी रे महीने आपा तीसरी बात में रेडी बुटीक री बात आई जावे। तो अणी तरीकों जिस तरह के चिप्स है, बिस्किट है, अचार है, ये सब चीज़ें अणी रे महीने आई जावे है। तो लारे लारे जटे आप प्रमुख क्षेत्र की बात करा तो अणी रे महीने डेयरी वे गया, फल वे गया, सब्जी, अनाज और ये जितना भी पेय पदार्थ जो है वनारा उद्योग जो है वे अणी रे महीने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग महीने शामिल है सा।
0: हाँ जी, बात कह रहा हूँ भैसा, जटे प्रसंस्करण रे स्तर जिस तरह बताया कि प्राथमिक स्तर पे जिस तरह अपन सफाई करनो, ग्रेडिंग बनानो, और दूसरा स्तर पे आपने जिस तरह आटो बनानो, दाल बनानो, और तीसरा स्तर पे आपने जिस तरह की वणी आटा दाल रो कणी तरीकों अपने काम में लेनो, जिस तरह की आटा रहा आप बिस्किट बनाई दीदा, दाल रहा आप देखो चिप्स बनाई दीदी, आप दाल रहा पापड़ बनाई दीदा। तो अणी तरीका हूँ देखो खाद्य प्रसंस्करण रे महीने ये तीन स्तर वे अणी तरीका रा स्तर पे आपने जो है वणी स्तर पे आप अणी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रे महीने आपा काम कर सका हाँ सा।
1: बिल्कुल सा। जटे सरकारी पहल री बात बतावा तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना और उत्पादन रे महीने आज योजना जो है प्रोत्साहन प्रदान करे है। और अणी रे माध्यमों 35% तक सब्सिडी जो है तकनीकी सहायता प्रदान करी जा रही है सा।
0: हाँ सा। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रे उद्देश्य री बात करा तो खाद्य सुरक्षा ने बढ़ानो है, पोषण रे महीने सुधार करनो है, आत्मनिर्भर भारत रे तहत अपने जितना भी स्थानीय उत्पाद है अंडे बढ़ावो देनो है, ज़्यादा ज़्यादा अपने ज़्यादा स्थानीय उत्पाद ने अगर आप बढ़ावा देंगा तो देखो सा अपने ज़्यादा स्थानीय लोगों ने रोजगार भी मिलेगा और अपने देश रो विकास

0: तो भाई सा कतरो बढ़िया गीत सुनायो आपणी बेना ने। और देखो सा अबे आपणे गांव रे महीने जानकारी करावा आपणी बेना ने कि नुक्कड़ नाटक और मनोरंजन ने बारा महीने। नुक्कड़ नाटक केवल मनोरंजन रो साधन नहीं है बल्कि यो एक सशक्त कला है जो हास्य व्यंग और सशक्त संवाद रे माध्यमों सामाजिक राजनीतिक और समसामयिक मुद्दा है जन पे जनता ने जागरूक करे। और यह पारंपरिक थिएटर वो अलग खुला स्थान आपे जिससे चौराहे वेगी चौपाल वेगी आप देखा कि गांव रे महीने चौपाल रे महीने बाजार रे महीने यो खेलियो जावे और दर्शक तक सीधा संदेश अणु देवे हैसा।
1: बिल्कुल सा जितने नुक्कड़ और नाटक और मनोरंजन रे वचेरी संबंध री बात करा तो अणिमें जागरूकता रे माध्यम री कि अणि रे महीने मुख्य उद्देश्य मात्र लोगा रो मनोरंजन करनो ही नहीं है बल्कि वणा ने सोचवा पे मजबूर करनो और भ्रष्टाचार शिक्षा स्वच्छता और पर्यावरण जैसी गंभीर विषय जो है वणा रे ऊपर बात करनो भी है सा।
0: हाँ सा और जटे नुक्कड़ नाटक री बात करी हाँ तो अंडे महीने मनोरंजन और संदेश रो भी यो मिश्रण है। नुक्कड़ नाटक रे महीने ऊर्जा उत्साह संगीत और ड्रामा रो भरपूर इस्तेमाल वे वे जंडे महीने भीड़ रो ध्यान आकर्षित करी मनोरंजन रे रास्ते समाज ने एक सकारात्मक दिशा देवे है सा।
1: बिल्कुल सा दे नुक्कड़ नाटक रे मुख्य तत्व री आप बात करा तो अणि में सीधो जुड़ाव जो अणि में कलाकार दर्शक रे वच्चे कई दीवार नहीं वेवे। कलाकार जो है सीधा लोगा रे वच्चे जई ने संवाद करे है। लारे लारे साधारण भाषा री बात करा तो नुक्कड़ नाटका में आम बोलचाल क्षेत्रीय भाषा रो प्रयोग करियो जावे ताकि

0: तो पूजा भाई सा
1: हाँ सा
0: देखो सा बहुत ही प्यारो सो राजस्थानी गीत जो है वो अपनी सखी बेनिया ने हुनायो सा। और अभी देखो सा कार्यक्रम ने आगे बढ़ाता तका जानकारी अपनी बेना ने आपा करा कि आम पन्ना रे बारे में। तो देखो सा कि आम पन्ना जो है वे काचा आम जो है वणों वणा वणावारो एक पारंपरिक तरीको है। खाद्य मिश्रण ग्रीष्मकालीन पेय है जो लू वही जावे तो वणी लू वंचाव करे है सा, और शरीर ने तुरंत ठंडो करे और अपना शरीर ने हर तरीकों स्वस्थ रखे है सा।
1: हाँ जी बात की रहो बैसा। और आम पन्ना री जटे बात कर रिया रसोड़ा रियाड़ी ले चालिया अपने बेना ने, तो विटामिन सी आयरन और इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर वेवे जो कि अपने पाचन रे महीने सुधार करे और थकान ने मिटावे। साहब देखो साहब बेना असी गर्मी रे महीने अपने देखो काम भी करे है और घर रो काम भी करे है और वणा ने विटामिन सी आयरन और देखो नरे पोषक तत्व की जरूरत पड़े, तो असी गर्मी रे महीने आम पन्नो जो है पोषक तत्वों भरपूर वेवे सा। तो अपनी बेना ने बतावा कि आम पन्ना वणावारी जो विधि है वो अपनी बेना ने बतावा सा। सब
0: बिल्कुल
1: पहला
0: सा
1: अपने आम लेना है, 3 से 4 काचा आम लेना है, धोइन कुकर में मैंने हाउ 3 से 4 सीटी लेन उबालना है सा। पचे गुदा निकाल देना है, ठंडा वेवा पे छिलका उतारन गुदा ने अलग कर लेना है। पचे वड़ा ने मिस मसाला पीसना है, गुदा रे लारे पुदीना पत्ती बुलियों तो को अपने जीरो लेनो है, जीरा पाउडर कालो नमक लेनो है। अपने इच्छा अनुसार आपा चीनी भी ले सका या पचे गुड़ भी ले सका। थोड़ी सी अदरक मिले ही ना अपने मिक्सी रे मैंने पीस ना हाउ तरीका रो अपने पेस्ट बनाई लेना है सा। पचे 2-3 चम्मच मिश्रण ने अपने ठंडा पानी रे लारे मिले देनो है और बर्फ रे टुकड़ा और पुदीना री पत्तियों आपा बढ़िया सो सजेदा अणि तरीका रो अगर आम पन्ना अपनी बिना बनाएगा तो बड़ो स्वादिष्ट बनेगा और लारे लारे देखो सा बड़ो स्वादिष्ट तो बनेगा इस अपनी बिना रे। और ये देखो सा टाबर टूब रहा और अपने देखो सा घरे मेहमान ने भी अगर आपा आम पन्नो अगर आपा परोसंगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। और अणि पेस्ट ने आपा एक कांच जार में भरीन हफ्ता तक फ्रीज में रख सका और पाचन तंत्र ने तो ठीक करे और पेट छतरी भी समस्या है मंडे महीने में घणो राहत देवे है सा।
0: बिल्कुल सा देखो बहुत ही बढ़िया जानकारी जो है अपनी बहना ने आपा दीदी सा। और देखो सा कि चालता चालता एक राजस्थानी गीत और अपनी बहना ने आपा हुणाई दा सा।
1: हाँ सा।

0: तो सरजू भैसा कतरो बढ़िया गीत हुणायो बेना ने, और जान करिए तो और भी करानी है, लेकिन आपा घड़ी रियाड़ी नाणा तो अबे आपने कार्यक्रम में इनू चाल वालो टाइम वी गयो, तो चाला सा
1: राम राम सा।

सहेलियारी बाड़ी, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। दोपहर के 1:45 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में बेहतरीन नगमे में। पहला गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, यंगिस्तान फिल्म से ये गीत है। आप हैं आरजी एकता के साथ, सुने ये पहला नगमा।

पढ़ाई प्यारा संगीत अभी आपने सुना कार्यक्रम फिल्म संगीत में। अगली आवाज़ सोनू निगम, श्रेया घोषाल और नीरज श्रीधर की आवाज़ में राज 2 फिल्म से ये गीत है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत कार्यक्रम में विक्की डॉनर की फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। आयुष्मान खुराना की आवाज

बड़ा ही प्यारा गीत अभी आपने सुना विक्की डोनर फिल्म का। अगली आवाज़ अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की है, बड़ा ही प्यारा गीत है ये भी, आइए सुनते हैं। फिल्म का नाम तमाशा।

तमाशा फिल्म से ये प्यारा सा नगमा अभी आपने सुना। आप यार जो एकता के साथ और एक और प्यारा सा ट्रैक सुनवाते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से शेखर सलीम नीति मोहन की आवाज़ों में ये प्यारा सा नगमा। संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म के साथ ही आज का फिल्मी गीतों का सफ़र भी यहीं समाप्त होता है। आप थे आरजे एकता के साथ और कुछ ही पलों में हम सुनेंगे विकास चर्चा। विकास चर्चा में आज का विषय है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी विस्तृत में हम देते हैं। आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय MOHUA द्वारा 1 जून 2020 को शुरू की गई थी और पीएम स्वनिधि स्कीम एक केंद्रीय क्षेत्रीय माइक्रो क्रेडिट पहल है जिसे पूरे भारत में स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 10,000 रुपये से शुरू होने वाले कॉलेटरल मुक्त वर्किंग कैपिटल लोन प्रदान करता है जिसमें 20,000 और 50,000 के बाद के लोन के साथ 7% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। स्कीम डिजिटल ऑपरेशन को बढ़ावा देती है।

0: भारत में स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 10,000 रुपये से शुरू होने वाले कॉलेटरल मुक्त वर्किंग कैपिटल लोन प्रदान करता है, जिसमें 20,000 और 50,000 के बाद के लोन के साथ 7% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। स्कीम डिजिटल ऑपरेशन को बढ़ावा देती है। पीएम स्वनिधि का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडिंग सेक्टर को औपचारिक रूप देना है, जिसे हॉकर, ठेले वाला और सर्विस प्रदाता जैसे बार्बर या काबलर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। लोन का उपयोग बिजनेस आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है, जिसमें कच्चे माल, उपकरण खरीदना या किराए का भुगतान करना शामिल है, और एक वर्ष में पुनर्भुगतान किया जा सकता है। किसी कॉलेटरल या प्रोसेसिंग शुल्क की आवश्यकता नहीं है, जिससे स्कीम व्यापक रूप से सुलभ हो जाती है। योग्य वेंडर में वेडिंग सर्टिफिकेट, पहचान कार्ड या शहरी स्थानीय निकायों से सुझाव पत्र वाले वेडिंग शामिल हैं। टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से उपलब्ध विस्तृत मार्गदर्शन और सहायता के साथ पीएम स्वनिधि पोर्टल या ऑफलाइन के माध्यम से एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट किए जा सकते हैं। योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। कार्यालय मंत्रालय, आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय, MOHU भारत सरकार। स्कीम लॉन्च होने की तारीख थी 1 जून 2020 को और ब्याज दर है 7%। और अपडेट करें हम मार्च 2026 तक का, तो इसमें पहली किश्त विस्तृत समय से 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। व्यापक कवरेज स्कीम अब जनगणना, शहर, अर्ध शहरी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र शामिल है। पहली किश्त की बात करें तो 15,000 तक है, दूसरी किश्त की बात करें तो 25,000 तक, और तीसरी किश्त की बात करें तो 50,000 रुपये तक का है। और इंटरेस्ट सब्सिडी और इंसेंटिव ट्रांजेक्शन के लिए अतिरिक्त डिजिटल कैशबैक इंसेंटिव उपलब्ध होने के साथ समय पर पुनर्भुगतान के लिए 7% प्रति वर्ष इंटरेस्ट सब्सिडी बनी रहती है। डिजिटल एकीकरण की बात करें तो यह स्कीम आवास और शहरी कार्य मंत्रालय MOHUA और फाइनेंशियल सेवा विभाग DFS द्वारा संयुक्त रूप से लागू की जाती है। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पीएम स्वनिधि स्कीम की प्रमुख विशेषताओं का उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती लोन प्रदान करना है, ताकि वे COVID-19 से प्रभावित बिजनेस को रीस्टार्ट कर सकें। पीएम स्वनिधि स्कीम के साथ आप उद्यमों के उद्देश्य से अन्य फाइनेंशियल सहायता विकल्पों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी देख सकते हैं। लोन राशि 10,000 रुपये तक के कॉलेटरल मुक्त कार्यशील पूंजी लोन प्रदान करना है। ब्याज सब्सिडी लोन के समय पर पहले पुनर्भुगतान पर प्रति वर्ष 7% की ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है। पुनर्भुगतान अवधि, लोन एक वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों में पुनर्भुगतान किए जा सकते हैं। समय पर पुनर्भुगतान करके आप आगे के लोन के लिए भी अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप एक मजबूत क्रेडिट इतिहास बनाएंगे। इसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं तो आप अपने बिजनेस को स्थापित करने और बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए मेक इन इंडिया स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। क्रेडिट स्कोर के अलावा समय पर पुनर्भुगतान करने से उधारकर्ता का क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है, जिससे वे भविष्य में उच्च लोन के लिए योग्य हो जाते हैं। और डिजिटल ट्रांजेक्शन इंसेंटिव, प्रति वर्ष 1200 तक के कैशबैक इंसेंटिव प्रदान करके डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहित करता है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो स्ट्रीट वेंडिंग सेक्टर को औपचारिक रूप दें और वेंडर को आधिकारिक मान्यता प्रदान करें। COVID-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से रिकवरी में सहायता के लिए और बैकग्राउंड की प्रारंभ की तारीख हाउसिंग और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। फाइनेंशियल समावेश की बात करें तो कार्यशील पूंजी लोन प्रदान करके और स्ट्रीट वेंडर को औपचारिक पेंशन सिस्टम में लाकर फाइनेंशियल समावेशन को बढ़ावा देना है। और स्ट्रीट वेंडर्स का फॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इसमें बिजनेस की वृद्धि के बाद की किश्तों में 20,000 और 50,000 तक की उच्च लोन राशि प्राप्त हो सकेगी। मानदंड की बात करें तो ULB द्वारा जारी वेट सर्टिफिकेट आइडेंटिटी कार्ड है। ULB सर्वे में पहचाने गए विक्रेता लेकिन जिन्हें अभी तक वैलिड सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त नहीं हुआ, विकास शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के विक्रेता जो ULB की सीमाओं के भीतर प्राप्त हैं। KYC डॉक्यूमेंट, कोविड ID या LOR के साथ आवश्यक आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, MNREGA जॉब कार्ड और पैन कार्ड। ये थी आज की विकास चर्चा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पर। अब हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और वहां से हम सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा

0: विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी

0: को मजबूत करना है।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
2: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
4: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
2: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
5: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से दो दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की

0: प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अरियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: आपसे कुछ देर में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री K. पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडिया वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम सरजू बिसा, राम राम।
1: राम राम पूजा बैसा, राम राम। कृषि जगत कार्यक्रम होणवा वाला हवला किसान भाई बहना ने आपनो
0: राम राम सा। देखो भैसा, कार्यक्रम में आया हाँ तो किसान भाई बहना रे वास्ते भांत भांत री जानकारी लेने आया हाँ सा। तो सब पहली किसान री बात रे मैंने बतावांगा कि पोल्ट्री फार्मिंग री शुरुआत जो है अपने किसान भाई बहन कई तरीकों कर सके, स्थान रो चुनाव कई तरीकों करे, रोड रो निर्माण कई तरीकों करे, शेड रो निर्माण कई तरीकों करे, और जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है अणु इनकम आए अपने किसान भाई बहना री कई तरीकों वे सके है सा। तो यह जानकारी आज अपने किसान भाई बहना ने आप करावंगा सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो जटे आप कृषि जगत कार्यक्रम भाई ने किसान री बात में लेने आया हाँ पोल्ट्री फार्मिंग री शुरुआत। तो किसान भाई बहना ने आपा बतावा कि पोल्ट्री फार्मिंग जो है वह पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन री शुरुआत करवा रे वास्ते एक स्पष्ट बिजनेस प्लान है जो बनायो है। जणी रे महीने उत्पादन रो चयन भी शामिल है। लारे लारे अच्छी तरह करा हऊ हवादार शेड रो निर्माण करनो। लारे लारे स्थानीय बाजार हूँ 2-3 लाख रुपया रे शुरुआती निवेश रे लारे लारे अणि मुनाफा वाला व्यवसाय री शुरू करिए सा।
0: हाँ सर। और जटे पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन कर रहा है अपने किसान भाई बहन तो स्थान रो चुनाव कई तरीकों करनो चाहे यो भी बतावा कि फार्म जो है रिहायशी इलाका में वेणो चाहे स्कूल या धार्मिक स्थल कम 500 मीटर की दूरी पे वेणो जावे। ध्यान यू राखनो है कि जटे पानी री उचित निकासी है, बिजली री 24 घंटा उपलब्धता वेवे, वटे सापने पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन है वो व्यवसाय अपने शुरू करनो जावे है सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो जटे मुर्गियां ने बीमारियों वंचावरे वास्ते शेड हवादार और वो पूर्ण रूप सूखो वेणो जावे। केवारो मतलब यो ही से कि जटे आप शेड निर्माण करी रहा हो और वटे आप मुर्गी पालन कर रखियो है तो वटे मुर्गियाँ रे कहिए कि जल्दी बीमारी लाग जाए तो अणी वास्ते मुर्गिया ने हर तरीकों बीमारियों वंचावणो है। बनने वास्ते जे भी शेड निर्माण कीधो है वे पूर्ण रूपों हवादार वेणा चावे और पर्याप्त मात्रा में सूखा वेणा चावे सा।
0: हाँ सा। और पैसा शुरुआती दनारे महीने यानी कि आप मुर्गी पालन शुरू करिए हाँ तो चूजा ने गर्मी देवारे वास्ते जो है आपने देखो बूटर है तापमान नियंत्रण की व्यवस्था करनी चाहे क्योंकि देखो ज़्यादा गर्मी रे महीने अगर आप मुर्गी पालन करांगा मुर्गियारा जो चूजा है वे बीमार भी जाएगा और बनाने देखो सा हवादार वातावरण में रखांगा तो वे स्वस्थ रहेगा सा। और फीडर और ड्रिंकर की जटे बात करा, दाना खाना रा बर्तन की बात करा तो अब देखो आपने मुर्गी पालन कर दिया हाँ तो देखो दाना पानी की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में वेणी जावे जिससे कि चूजा ने पर्याप्त पोषण मिलते रहे और जो भी आप दाना पानी का बर्तन है वे एकदम साफ सुथरा वेणा जावे, पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था वेणी जावे। जणू कहिए कि आपने जो भी आप मुर्गिया है चूजा है वे हऊ तरीका रा रहेगा और हमारी बढ़वार जो है हऊ तरीका री वेगा सा।
1: बिल्कुल सा पूजा भाई सा। देखो किसान भाई बहना ने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी थी कि पोल्ट्री फार्मिंग री शुरुआत। और देखो अणीरे महीने मुर्गी पालन कणी तरीकों करनो है, वटे जगह कणी तरीका री राखनी है, स्थान रो चयन किस तरह करनो है या रोड रो निर्माण शेड रो निर्माण किस तरह करनो है अणी तरीका री सारी जानकारी जो है आपा किसान भाई बहना ने दीदी सा। और देखो सा की जानकारी तो आपा नरीहारी देवा नरीहारी करावा पर देखो अणी कार्यक्रम महीने आवा तो कार्यक्रम महीने अपना किसान भाई बहना रो मनोरंजन कराणो भी जरूरी वे सा। तो आप केवो तो एक राजस्थानी गीत हुणाईने मनारो मनोरंजन करावा सा।
0: हाँ सा।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबी

0: आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: तो पूजा भाई सा,
2: हाँ सा,
1: देखो सा, अपने किसान भाई बहना ने बहुत ही प्यारो सो राजस्थानी गीत उड़ायो सा, और देखो सा कार्यक्रम ने आगे बढ़ावता तका पा किसान भाई बहना ने जानकारी करावा कि देखो फसल बीमा योजना रे बारे में। तो देखो सा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि अणी रे महीने सब जो है फसल खराब हुई गई है अणी वजह, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे तहत आपने सरकार री तरह मुआवजो मिले है सा। जणियो किसान भाई लोग जितनी भी फसल खराब हुई है तो वे बनारी भरपाई पूर्ण रूपों कर सके सा।
2: हाँ सर, और भाई सर जटे फसल बीमारी बात कर रही हैं, हाँ तो अणी योजना री जो मुख्य विशेषता है बतावा कि किफ़ायती प्रीमियम जो है अपने किसान भाई बहन रे आर्थिक बोझ ने कम करवारे वास्ते जो प्रीमियम है वो बहुत ही नाम मात्र रो अण में प्रीमियम है सा। खरीफ मानसून री फसल रो जो प्रीमियम है वो 2%, रबी जो सर्दिया री फसला है वनडो 1.5%, यानी कहवारो मतलब कि अंडो प्रीमियम बहुत ही कम प्रीमियम रे महीने अपने किसान भाई बहन अंडो बीमो ले सके, और व्यवसाय और बागवानी जितनी भी फसला है अंडो प्रीमियम 5% तक है। तो अपने किसान भाई बहन अपने फसल रो बीमो कराई सके अने योजना रे तहत, और अपने फसला ने कीट है, सूखो है, बाढ़, ओलावृष्टि अणु आसानी बचे सके है सा।
1: बिल्कुल सा, और देखो कवर कीधा जावा वाला जितना भी जोखिम है तो बुवाइयों लेने ठेठ कटाई रे बाद तक गैर प्रतिबंधित प्राकृतिक जोखिम जो है उन्हें जोखिम रा कवर किया जावे है सा।
2: हाँ सा, और जो किसान भाई बहन फसल बीमा योजना ले रहा है तो वे आवेदन कणी तरीकों कर सके, यो भी अपने किसान भाई बहन ने बतावा कि देश रो कोई भी किसान जो कि बटाईदार किसान सहित जो भी किसान है अपनी जो फसल है वनडो बीमो करवाई सके है, और वे समय समय पर फसल री बुवाई रे 10 दिनारे भीतर आवेदन वणाने करनो अंडे महीने बहुत ही आवश्यक है सा।
1: देखो सा जटे ऑनलाइन आवेदन री आप बात करा, और किसान भाई बहना ने आप बतावा कि किसान भाई जो है वे सीधा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल पे या पछे अपना कोई नज़दीकी बैंक शाखा है तो कॉमन सर्विस सेंटर, CSC सेंटर वे गया अनारे माध्यमों पंजीकरण कराई सके है सा।
2: और अपने किसान भाई बहन जो है राजस्थान या पे अपने स्थानीय क्षेत्र किसान भाई बहन जो है सटीक प्रीमियम योजना री जानकारी रे वास्ते राज किसान साथी पोर्टल पे भी जैन पूरी जानकारी प्राप्त कर सके कि कणी तरीका रो बीमो कराणो है, किसर प्रीमियम जमा कराणो है, अंडी सारी जानकारी जो है वना ने राज किसान साथी पोर्टल पे वे पूरी जानकारी वना ने उपलब्ध वी जाएगा सा।
1: बिल्कुल सा, देखो अतरी बहुत ही बढ़िया जानकारी जो है की फसल बीमा योजना रे बारे में तो आप किसान भाई बहना ने जानकारी कराई सा। और देखो अनीस फसल बीमा योजना री जानकारी रे लारे लारे हुणे देवा एक राजस्थानी गीत।
2: हाँ सा।

0: वैसा कतरो बढ़िया गीत हुनायो आपने किसान भाई बहना ने, धरती धुरारी। और वास्तव में आपने धरती धुरारी है, और जटे धरती धुरारी बात करे और धुरारी धरती पे देखो आपने किसान भाई बहन फसल उगावे है, और फसल जो है किसान भाई बहन उगे रहा है और वनारी फसल बढ़िया वेवे। अंडे वास्ते आपा बतायो कि भाई वनारी फसल खराब हो जावे तो वनडे वास्ते वे बीमो ले सके, फसल बीमा योजना रे पहला गीत रे पहला वाणा ने जानकारी करे। और अबे आपने किसान भाई बहना ने बतावा कि फसल बीमा जो योजना है एक वंडी क्लेम प्रक्रिया कणी तरीकों कर सके है सा।
1: बिल्कुल सा, देखो जेटे फसल बीमा क्लेम री राशि जो है सीधा लाभार्थी किसान भाई लोगा रे बैंक खाता रे महीने पहुंची जावे, और डीबीटी रे माध्यमों जमा करी जावे है। अगर किसान भाई लोगा री फसल रो नुकसान भियो है या आप बीमा राशि री स्थिति देखनो चाहो तो आप जो है अन्य आधिकारिक PMFBI पोर्टल, कृषि रक्षक पोर्टल या व्हाट्सएप रे माध्यमों चेक करी सक्रिया हो। और जटे व्हाट्सएप री बात आवे तो आपना पंजीकृत मोबाइल नंबर जो है वर्णों 7065574447 पे हाय लिखन मैसेज भेज सको, तो वनो जो है जवाब वापस आपने मिल जाएगा सा।
0: हाँ सा, और वैसा व्हाट्सअप चैटबोर्ड द्वारा अपने एक लिंक भी प्राप्त हुएगा, और वही लिंक पर क्लिक करीने अपनों रजिस्ट्रेशन नंबर या पच्चे पॉलिसी आईडी अपने दर्ज करनी पड़ेगा, और क्लेम री जो स्थिति है वह आप आसानी देख सकें सा।
1: बिल्कुल सा, और देखो कि जटे आधिकारिक वेबसाइट री बात आवे तो PMFBY री आधिकारिक वेबसाइट जो है वह नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर जानो है, और सीजन रो चुनाव करनो है। सीजन री चुनाव रे लारे लारे वणी सीजन री फसल रो भी चुनाव करनो है सा।
0: और पचे अपने स्थानीय स्तर पे आपा संपर्क कर सका, कहीं भी अपने नज़दीकी बैंक शाखा जटे अपनों वीमो व्यो है, या पचे कृषि विभाग कार्यालय में जैन या पचे जनसेवा केंद्र में जैन भी अपने क्लेम रो आपा स्टेटस देख सका कि अपने जो भी आपा क्लेम करायो है वनडी आपा पूरी जानकारी आसानी वटे जैन पूरी प्राप्त कर सका। हाँ सा
1: बिल्कुल सा, तो देखो बहुत ही बढ़िया जानकारी जो है कि फसल बीमा क्लेम प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी थी अपना किसान भाई बहना ने। और चालता चालता एक राजस्थानी गीत किसान भाई लोगों ने और हुनाई दासा।
0: हाँ सर।

0: तो पूजा भाई साहब,
1: हाँ सर,
0: देखो सा बहुत ही प्यारा सा राजस्थानी गीत होनाया, लारे लारे बढ़िया बढ़िया जानकारियां कर रही। और देखो साने कृषि जगत कार्यक्रम में ने अपना वाता चिता करवारो तो और मन करी रियो है, पर देखो घड़ी री आड़ी नाला तो अणी कार्यक्रमों आपने चालवारो टेम वे गयो। ऐसा तो चाला सा
1: राम राम सा।
0: राम
2: कृषि जगत।

0: ये कार्यक्रम अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। दोपहर के 3 बजने को है, जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और वहां से हम सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचार होंगे अब से कुछ ही पलों में।
1: लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नीदरलैंड्स दोस्ती का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम में हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है।
2: नीदरलैंड्स के समाज और यहाँ के इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहाँ की सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि भारत में एआई समिट का सफल आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मिलने का कार्यक्रम है। यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर, चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मंगलवार को इटली पहुंचेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य के कैप्टागन ड्रग्स जब्त की है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार भारत को नशा मुक्त देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। यह चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
4: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: बैडमिंटन में

0: सात्विक राइजर वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में इस जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गोहर उजेफेई को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दोपहर के ठीक 3:05 हो चुके हैं। हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 सांधिकालीन सभा के प्रसारणों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर शाम के 5 बजने वाले हैं। हमारी संध्याकालीन सभा के प्रसारण मीडियम वेव चैनल पर अब आरंभ होते हैं। सबसे पहले सुनते हैं युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। इसे आप हमारे एफएम चैनल पर भी सुन सकते हैं। एक साथ

0: नमस्कार श्रोताओं, इस खूबसूरत शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दिव्या।
1: और मैं हूं मानस। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन से भरपूर कई खास प्रस्तुतियां।
0: दोस्तों, हर दिन अपने साथ नई सोच, नए अनुभव और इतिहास के कुछ अनमोल पल लेकर आता है।
1: और जब बात हो एक साथ सीखने और सुनने और कुछ यादगार पलों को महसूस करने की, तो कार्यक्रम और भी खास बन जाता है।
0: आज की इस शाम में हम बात करेंगे उन घटनाओं की जिन्होंने इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई, साथ ही जानेंगे कुछ रोचक और प्रेरणादायक बातें।
1: इसके साथ ही कार्यक्रम में होगा उत्साह, नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा का सुंदर संगम।
0: सुनते हैं युवाणी, क्योंकि यहाँ हर आवाज में बसती है भारत की पहचान।

0: भारत की खूबसूरती सिर्फ उसके बड़े शहरों में नहीं बल्कि उन शांत और प्राकृतिक जगहों में भी बसती है जहाँ पहाड़, बादल, हरियाली और संस्कृति मिलकर एक अलग ही दुनिया बना देते हैं। हमारे देश में कुछ शहर और इलाके ऐसे हैं जो आपकी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और शांति के लिए खास पहचान रखते हैं। ऐसी जगहों पर जाकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद मुस्कुरा रही हो। आज शहर की बात में हम आपको ले चलेंगे भारत के खूबसूरत उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर, जहाँ बसे हैं मनमोहक शहर और गांव गंगटोक, पाक्योंग, जोरेथोंग।
1: जी दोस्तों, आज के हम कार्यक्रम में सबसे पहले बात करने वाले हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम की राजधानी गैंगटोक शहर की।
0: यह शहर हिमालय की पहाड़ियों में लगभग 1650 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जो कि अपनी नेचुरल ब्यूटी, साफ सफाई और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है।
1: गैंगटोक की खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ से दुनिया की जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, उसका भी हमें सुंदर सा व्यू दिखाई दे

0: देता है। साथ ही गैंगटॉक का जो टूरिज्म है, बौद्ध कल्चर है, एडवेंचर गेम्स है, वो भी यहाँ का मेन सेंटर है।
1: बिल्कुल, शहर की रोड्स ना केवल साफ़ सुथरी मानी जाती है बल्कि काफ़ी सिस्टमेटिक और अलाइन भी मानी जाती है। यहाँ पर नेपाल, भूटान और लेपचा कल्चर का भी सुंदर मिक्सचर देखने को मिलता है।
0: टूरिज्म स्पॉट की बात करें तो एमसी मार्ग, जो कि यहाँ का पॉपुलर मार्केट है और घूमने की जगह भी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर गाड़ियाँ भी नहीं चलती, इसलिए आप आराम से घूम भी सकते हैं।
1: इसके अलावा रूमटेक मोनेस्ट्री भी, जो जो कि फेमस बौद्ध मठ है, इसे तिब्बतियन बौद्ध कल्चर का इम्पोर्टेंट माना जाता है और यहीं से लगभग 40 किलोमीटर दूर खूबसूरत हिमालयी झील स्थित है।
0: बात करें मौसम की तो गर्मियों में यहाँ मौसम काफ़ी सुहावना रहता है और सर्दियों में काफ़ी ठंड पड़ती है। आसपास के एरिया में बर्फबारी भी होती है, इसलिए घूमने का जो सबसे अच्छा समय है वो मार्च से जून और अक्टूबर से दिसंबर माना जाता है।
1: गंगटोक के बाद आगे बात करेंगे सिक्किम के सुंदर पहाड़ी शहर पाक्योंग की, जो सिक्किम के पूर्व में स्थित है और अपने आधुनिक एयरपोर्ट के लिए जाना जाता है।
0: गैंगटॉक से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह शहर भी काफ़ी सुंदर और शांत है, हमेशा पहाड़ी हरियाली और बादलों से घिरा रहता है।
1: पाक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसका उद्घाटन 2018 में हुआ और यह भारत के सबसे ऊंचे एयरपोर्ट में से एक माना जाता है।
0: यहाँ आसपास के पहाड़ी गांव और नेचुरल व्यू काफ़ी सुंदर है, जहाँ पर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो।
1: बिल्कुल, मोमोज, थुक्पा और जो सिक्किम की ट्रेडिशनल डिशेस है वो भी यहाँ काफ़ी टेस्टी है।
0: यहाँ के एयरपोर्ट का जो निर्माण है वो काफ़ी कठिन पहाड़ी इलाके में किया गया है, इसलिए इंजीनियरिंग का जो सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक माना जाता है इसे, क्योंकि ऐसे ऊंचाई वाले इलाके में जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी काफ़ी कम होती है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मुश्किल होता है।
1: और इसीलिए ऐसा कंस्ट्रक्शन अपने आप में एक अलग ही टास्क है। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं और ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं तो आपको यह शहर बहुत पसंद आएगा।
0: अब इस सिक्किम से चलते हैं साउथ सिक्किम के शहर जोरथांग के बाद पास में, जो कि यह शहर बसा है रंगीत नदी के किनारे। यह शहर सिक्किम में एज ए बिजनेस और टूरिज्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है।
1: बिल्कुल, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच बिजनेस कॉन्टैक्ट को मेन सेंटर है, बिजनेस का मेन सेंटर होते हुए भी काफ़ी शांत माना जाता है ये।
0: पहाड़, हरियाली और नदियों का एक साथ व्यू बड़ा ही सुंदर देखने को मिलता है। जोरेथांग बाज़ार यहाँ के जो लोकल परचेसिंग है और कल्चरल प्रोग्राम्स है उसके लिए काफ़ी मशहूर है।
1: बिल्कुल, रंगीत रिवर शहर की सुंदरता और बढ़ाती है। इसके आसपास का जो एरिया है वह भी नेचुरल लवर्स को काफ़ी पसंद आता है।
0: यहाँ का साल में जो एक बार लगने वाला जोरेथांग माघ मेला होता है वो भी काफ़ी खास है। इसमें हमें कल्चरल प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, गेम्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ बिजनेस से जुड़ी सभी चीज़ें देखने को एक साथ मिलती है।
1: बिल्कुल, मौसम यहाँ गर्मी में हल्का गर्म और सुहावना रहता है, मानसून में बारिश अच्छी होती है और सर्दियों में ठंड आरामदायक होती है, इसलिए यहाँ ऑल सीज़न शहर है।

0: तो दोस्तों बात कर रहे थे हम सिक्किम शहर के बारे में। तो 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बना। इससे पहले सिक्किम एक राजशाही राज्य था जहाँ चोग्याल नामक राजा शासक करते थे। मनोरंजन की दुनिया में कुछ सितारे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपनी फिल्मों से ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनैलिटी और अंदाज से भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। एक तरफ हॉलीवुड की चमक दमक है तो दूसरी तरफ बॉलीवुड का जोश और भारतीय सिनेमा की खूबसूरती।
1: और बिल्कुल दोस्तों, हमारे इस अगले सेगमेंट में हम कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ की ही बात करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मेगन फॉक्स की, जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2001 में आई फैमिली फिल्म हॉलीडे इन द सन से की थी,
0: जिसके बाद उन्होंने फिल्म और टेलीविज़न में कई सहायक भूमिकाएं निभाईं, जैसे कि टीन म्यूजिक कॉमेडी कन्फेशन ऑफ अ टीनेज ड्रामा क्वीन।
1: साथ ही होप एंड फेथ में मेन रोल भी निभाया। और उनका जो सबसे पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रांसफॉर्मर रहा था, वो 2007 में रिलीज़ हुई थी। इसमें मिकाएला बेंस की इनकी भूमिका काफ़ी चर्चित रही थी, जिन्हें इन्होंने ट्रांसफॉर्मर के सीक्वल में भी निभाया।
0: बिल्कुल, हॉरर कॉमेडी फिल्म, सुपर हीरो एक्शन फिल्म जैसी कई कैटेगरी की फिल्मों में रोल निभाया है। हॉरर कॉमेडी में 2009 की जेनिफर्स बॉडी में मेन रोल निभाया इन्होंने।
1: और सुपर हीरो एक्शन फिल्म में भी टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल में काफ़ी जो पॉपुलर रही थी फिल्म, उसके सीक्वल में भी इन्होंने रोल निभाया। इसमें इन्होंने अप्रैल ओनील का जो कैरेक्टर था उसमें काफ़ी चर्चा में रहे थे।
0: तो दोस्तों अब बात करते हैं हम विक्की कौशल के बारे में। यह हिंदी फिल्मों में ऐसे एक्टर माने जाते हैं जो हर कैटेगरी की फिल्मों में अपने रोल को अच्छे से निभाने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड जैसे कई अवार्ड्स मिले हैं।
1: विक्की फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में भी शामिल है, जो

0: की अपनी पीढ़ी के हिंदी सिनेमा के मेन एक्टर्स में से एक है।
1: RGIT से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद 2012 में अनुराग कश्यप के हेल्पर के रूप में क्राइम ड्रामा फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर से अपना करियर की शुरुआत की।
0: इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में इन्होंने छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई और एज अ मेन रोल इन्होंने 2015 में मसान से में निभाया। इसके बाद कश्यप की जो थ्रिलर फिल्म रमन राघव थी उसमें भी इन्होंने एक्टिंग की।
1: बिल्कुल, इसके बाद 2018 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ड्रामा फिल्मों में राजी और संजू के सहायक भूमिकाएं निभाई और यहीं से इनकी इनकी कहानी चालू हुई।
0: 2019 में आई फिल्म यूरी में जो द सर्जिकल स्ट्राइक थी, इसमें इन्होंने द आर्मी ऑफिसर के रूप में मेन रोल किया था, जिसमें वे बॉलीवुड के लीडिंग एक्टर्स में से शामिल हो गए थे। इस फिल्म ने इन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी दिलवाया।
1: इसके बाद बायोपिक सरदार उधम में उधम सिंह का किरदार भी बखूबी निभाया, जिसे काफ़ी सराहा गया और बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर क्रिटिसाइज अवार्ड भी मिला।
0: रोमांटिक कॉमेडी जरा हटके जरा बचके बायोपिक सेम बहादुर कॉमेडी ड्रामा में डंकी से इन्हें इकोनॉमिकली भी काफ़ी सक्सेस मिली और जो इनका सक्सेस थी वो काफ़ी बड़ी।
1: बिल्कुल, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 2025 में आई फिल्म छावा रही, जिसमें उन्होंने संभाजी का किरदार निभाया था।
0: अपनी एक्टिंग के करियर के अलावा विकी ने कई ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइज भी रेगुलरली किए हैं, साथ ही अवार्ड सेरेमनी में एक मेजबानी भी निभाई और कई परफॉर्मेंस भी दिए।
1: इसके साथ ही उन्हें 2019 में उरी पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। डंकी और संजू के लिए बेस्ट हेल्पिंग एक्टर अवार्ड भी मिला।

आज के दौर में विज्ञान और मनोरंजन ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारी जिंदगी को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। एक तरफ विज्ञान हमें नई

0: जाता है। उन्होंने वैज्ञानिक रिसर्च के जरिए यह समझने में मदद की कि हमारे शरीर में मौजूद प्रोटीन किस तरह से काम करता है।
1: दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो हमारे शरीर की हर छोटी बड़ी प्रक्रिया में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है, और इन्हीं प्रोटीन की संरचना यानी स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बीमारियों का इलाज खोजा जा सके।
0: रामकृष्ण भी हुजूर जी ने इसी क्षेत्र में अद्भुत काम किया। उन्होंने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी कि NMR तकनीक का उपयोग करके प्रोटीन की संरचना को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: NMR तकनीक सुनने में थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन इसका काम बहुत महत्वपूर्ण है। इस तकनीक की मदद से वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि शरीर के अंदर मौजूद अणु यानी मसल्स किस तरह बने हैं और कैसे काम कर रहे हैं।
0: और यही वजह है कि हुजूर जी का जो रिसर्च मेडिकल साइंस के लिए उन्हें बेहद उपयोगी माना जाता है। उनका काम नई दवाइयों और बीमारियों की रिसर्च में भी मददगार साबित हुआ है।
1: बिल्कुल दोस्तों, भारत में विज्ञान के क्षेत्र में काम करना हमेशा आसान नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद रामकृष्ण वी होसूर जी ने मेहनत और समर्पण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई।
0: उन्होंने भारत के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया और रिसर्च को एक नई दिशा दी। वे युवाओं को विज्ञान की ओर प्रेरित करने के लिए भी जाने जाते हैं।
1: कई बार लोग सोचते हैं कि वैज्ञानिक सिर्फ लैब में काम करते हैं, लेकिन असल में उनका काम पूरी मानवता के भविष्य को बेहतर बनाना है।
0: सही कहा। अगर आज मेडिकल साइंस इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो उसके पीछे ऐसे वैज्ञानिक की मेहनत ही छिपी होती है।
1: बिल्कुल, रामकृष्ण वी होसूर जी को उनके योगदान के लिए कई सम्मान भी मिले। वे भारतीय विज्ञान जगत में एक सम्मानित नाम माने जाते हैं।
0: उनके शोध पत्र यानी कि रिसर्च पेपर्स दुनिया भर की वैज्ञानिक उन्हें कई युवा वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन भी दिया है।
1: दोस्तों, विज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान और सुरक्षित बनाता है, और ऐसे वैज्ञानिक हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान और मेहनत से दुनिया बदलती जा सकती है।
0: बिल्कुल, रामकृष्ण वी होसूर जी की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर लगन सच्ची हो तो इंसान अपने काम से पूरी दुनिया में पहचान बना सकता है।
1: तो दोस्तों, अब बात करते हैं हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पियर्स ब्रॉसनन की। उनका जन्म 1953 में आयरलैंड में हुआ था। उनका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले जेम्स बॉन्ड की छवि आती है।
0: बिल्कुल, पियर्स ब्रॉसनन का जो जन्म था वो आयरलैंड में हुआ था। उन्होंने अपने अभिनय का शानदार व्यक्तित्व के दम पर दुनिया भर में करोड़ों प्रशंसकों का दिल जीता।
1: उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। बचपन में उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे अभिनय की दुनिया में अपनी जगह बनाई।
0: दोस्तों, पियर्स ब्रॉसनन ने शुरुआत टीवी से की थी, लेकिन असली पहचान उन्हें जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से मिली थी। उन्होंने पहली बार 1995 में गोल्डन आई फिल्म में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया, और इसके बाद वे दुनिया के लोकप्रिय बॉन्ड अभिनेताओं में शामिल हो गए।
1: उनकी स्टाइल, आवाज़ और आत्मविश्वास लोगों को बेहद पसंद आया। उन्होंने जेम्स बॉन्ड को एक नया अंदाज दिया।
0: इसके बाद उन्होंने टुमारो नेवर डाइज, द वर्ल्ड इज़ नॉट इनफ और डाई अनदर डे जैसी फिल्मों में काम किया।
1: दोस्तों, पियर्स ब्रॉसनन सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं है, उन्होंने कई भावनात्मक और गंभीर फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया है।
0: वे एक अच्छे निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर भी हैं, साथ ही वे पर्यावरण संरक्षक और सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहते हैं।
1: यह बात उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान भी बनाती है।
0: पियर्स ब्रॉसनन को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले। उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन भी मिला है।
1: बिल्कुल, उनकी लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है। नई पीढ़ी भी उन्हें बेहद पसंद करती है।
0: एक खास बात यह है कि उन्होंने अपने करियर में अलग अलग किरदार निभाए। वे इसी वजह से लोग उन्हें जेम्स बॉन्ड तक ही सीमित नहीं मानते हैं, बल्कि अन्य क्षेत्र में भी काफ़ी चर्चित मानते हैं। तो दोस्तों, इसी कार्यक्रम में आगे हम बात करने वाले हैं बर्थडे सेलिब्रिटीज़ के बाद में डेथ एनिवर्सरी की, जिसमें हम बात करेंगे रूसी मोदी की, यानी कि रुस्तम जी होसमुजी मोदी, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। इन्हें ज़्यादातर लोग रूसी मोदी के नाम से ही जानते हैं।
1: बिल्कुल, यह टाटा स्टील के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, साथ ही टाटा ग्रुप के लीडिंग मेंबर भी थे।
0: 17 जनवरी 1918 को बॉम्बे के पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ। अपना स्कूल एजुकेशन इन्होंने शुरू से ही कुछ साल भारत से ही किया, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए।
1: बिल्कुल, अपने कार्य और अच्छे व्यक्तित्व के लिए उन्हें 1989 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था।
0: मोदी ने 1939 में टाटा स्टील में कार्यभार संभाला और 1953 में उन्हें कार्मिक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया। 1965 में उन्होंने कच्चा माल निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इसके बाद 1970 में उन्होंने संचालन निदेशक के लिए भी नियुक्त किया गया।
1: 1972 में जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बने। टाटा स्टील के मंडल प्रबंधकों को AC मारुति सुजुकी 800 जैसी कई पुरस्कार भी इन्होंने भी ही शुरू किए।
0: मार्च 1993 में टाटा स्टील में से रिटायरमेंट के बाद इंडियन एयरलाइंस और

0: तो दोस्तों, खेल सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं होता है, बल्कि एक यह जुनून, मेहनत और अपने सपनों को सच करने की कहानी भी होती है। दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेडल नहीं जीतते, बल्कि पूरे खेल की दिशा बदल देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही दो महान हस्तियों के बारे में, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हम बात करेंगे ओल्गा कॉर्बुट की और साइमन वीटफील्ड की।
1: बिल्कुल दिव्या, ओल्गा कॉर्बुट को द स्पेरो फ्रॉम मिन्स भी कहा जाता था। उनकी जो फुर्ती, ऊर्जा और अनोखे स्टंट्स थे, इसने पूरी दुनिया को उनका दीवाना बना रखा था।
0: बिल्कुल, ओल्गा कॉर्बुट का जन्म आज ही के दिन 1955 को सोवियत यूनियन के मिन्स्क शहर में हुआ था। आज यह इलाका बेलारूस देश में आता है।
1: बचपन से ही उन्हें खेलों में काफ़ी रुचि थी, लेकिन जिमनास्टिक्स में जो उनकी प्रतिभा थी वो बहुत ही जल्दी पहचान ली थी, क्योंकि जिमनास्टिक उनका ऐसा खेल था जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद था।
0: उन्होंने बहुत छोटी उम्र में कठिन ट्रेनिंग शुरू कर दी। जिमनास्टिक्स एक ऐसा खेल है जिसमें शरीर का संतुलन, ताकत और आत्मविश्वास बेहद ज़रूरी होता है।
1: और ओल्गा इन तीनों चीज़ों में कमाल की थी। उनकी सबसे ख़ास बात थी कि वो उनका निर्डर अंदाज़।
0: बिल्कुल दोस्तों, 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में ओल्गा कॉर्बुट ने अब पहली बार दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा।
1: उस समय उनकी उम्र केवल 17 साल की थी, लेकिन उन्होंने जो प्रदर्शन किया था वो इतिहास बनाने लायक था।
0: उन्होंने अपने रूटीन में ऐसे कठिन मूव्स किए जिन्हें उस समय लगभग असंभव माना जाता था।
1: उनका सबसे प्रसिद्ध स्टंट था कॉर्बुट फ्लिप। यह बैलेंस बीम और अनइवन बार्स पर किया जाने वाला बेहद ही खतरनाक मूव माना जाता है।
0: बिल्कुल, जब लोगों ने पहली बार यह स्टंट देखा तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा।
1: उनका जो प्रदर्शन था उसमें सिर्फ ताकत ही नहीं थी, बल्कि भावना और कला भी दिखाई देती थी। यही वजह थी कि लोग उनके तुरंत जुड़ गए थे।
0: बिल्कुल दोस्तों, ओल्गा कॉर्बुट ने 1972 ओलंपिक में 4 मेडल जीते। इनमें 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल शामिल था।
1: इसके बाद वे पूरी दुनिया में सुपरस्टार बन गई। लोग उन्हें देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे।
0: बिल्कुल, एक खास बात यह थी कि उस दौर में जिमनास्टिक्स को इतना लोकप्रिय नहीं माना जाता था, लेकिन ओल्गा इस खेल में को दुनिया भर में नई पहचान दिलाई थी।
1: उन्होंने जिमनास्टिक को बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और भावनात्मक खेल बना दिया। इसके बाद उन्होंने लाखों बच्चों को इस खेल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
0: 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। वहाँ भी उन्होंने मेडल जीते और अपनी प्रतिभा साबित की। अगर उनके कुल ओलंपिक मेडल्स की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में कुल 6 ओलंपिक मेडल जीते हैं।
1: इनमें 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल शामिल है। ये उपलब्धि उन्होंने अपने बहुत ही बड़ी जो ताकत थी उससे हासिल की, बहुत कड़ी ट्रेनिंग से हासिल की थी।
0: वे उस दौर की सबसे चर्चित खिलाड़ियों में शामिल थी। उनके इंटरव्यू, तस्वीरें और प्रदर्शन अखबारों और टीवी की पर लगातार दिखाए जाते हैं।
1: उनकी यही वजह है कि महिलाओं की जो जिम्नास्टिक थी उसको उन्होंने नई पहचान दिलाई। आज भी कई जिम्नास्ट उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। उनकी शैली और आत्मविश्वास आज भी लोगों को प्रभावित करती है।
0: दोस्तों, हर खिलाड़ी की ज़िंदगी में चुनौतियाँ भी आती है। ओल्गा को भी कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था।
1: लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने हमेशा अपने खेल को और अपने जुनून को सबसे ऊपर रखा।
0: यही वजह आज भी उनका नाम जिम्नास्टिक्स इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में लिया जाता है।
1: ओल्गा कॉर्बुट को कई खेल सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली। इन्हें दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली जो जिम्नास्टिक है उसमें भी गिना जाता है। तो दोस्तों, अब को ओल्गा कॉर्बुट के बाद में बात करते हैं साइमन विटफील्ड की, जो कि रिटायर्ड कैनेडियन ओलंपिक ट्रायथलॉन चैंपियन है। इन्होंने लगातार 10 कैनेडाई ट्रायथलॉन चैंपियन जीती है और सन 2000 के जो सिडनी समर ओलंपिक्स है उसके समापन समारोह में कनाडा का जो नेशनल फ्लैग था वो भी इन्होंने कैरी किया।
0: बिल्कुल, जहां वे गोल्ड मेडल भी जीते और 2012 की ओपनिंग सेरेमनी में भी फिर से कैरी किया उन्होंने वो फ्लैग, जिससे वे कनाडा के उन गिने चुने कैनेडियन में से एक हैं जिन्हें 2 बार नेशनल फ्लैग कैरी करने का सम्मान प्राप्त हुआ है।
1: विटफील्ड ने बचपन में फुटबॉल खेला और फिर 11 साल की उम्र में ट्रायथलॉन में कदम रखा। 15 साल की उम्र में उन्होंने ट्रायथलॉन को सीरियसली एज अ कॉम्पिटिटिव लेना शुरू कर दिया। सन 2000 के जो समर ओलंपिक थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता।
0: बिल्कुल, जहाँ वे दूसरे साइकिलिस्ट के साथ में रेस के दौरान गिर गए थे, लेकिन फिर भी वे उठ खड़े हुए। सन 2008 में लगातार तीसरी बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और तो और वे गोल्ड मेडलिस्ट से केवल 5 सेकंड से पीछे रह गए थे।
1: 2012 में जो लंदन ओलंपिक रहे थे उसमें वे बाइक से गिर गए थे और उसके कारण उनकी जो कॉलर बोन थी वो टूट गई थी, जिससे उन्हें रेस से

0: बाहर का होना पड़ा था। इसके बाद 2013 में वे रिटायर हो गए थे।
1: वैसे दोस्तों, ट्रायथलॉन की बात करें तो यह एक मल्टी शॉट इवेंट होता है जिसमें कि तीन अलग अलग गेम्स होते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग। ये तीनों ही गेम सिंगल रेस में बिना ब्रेक के कंप्लीट करने होते हैं।
0: और इसी स्पोर्ट में जो साइमन थे, इन्होंने कई मेडल और कई अवार्ड जीते, जैसे कि 1999 में पैन अमेरिकन गेम में ब्रॉन्ज, सन 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में गोल्ड, 2002 के राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, दुनिया लगातार आगे बढ़ रही है। आज इंसान सिर्फ ऊंची इमारतें ही नहीं बना रहा, बल्कि ऐसे अद्भुत प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहा है जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। कभी समुद्र के ऊपर पुल बनाए जाते हैं, तो कभी पहाड़ों के अंदर सुरंगें। इंजीनियरिंग और तकनीक ने आज लगभग हर मुश्किल को आसान बना दिया है। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जो आधुनिक इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण माना जा रहा है, स्टेट शिप टनल।
4: बिल्कुल दिव्या, यह प्रोजेक्ट नॉर्वे देश में बनाया जा रहा है और इसे आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जा सकता है।
3: बिल्कुल दोस्तों, आपने सड़क सुरंगें यानी रोड टनल को बहुत सुनी होगी, लेकिन जहाज़ों के लिए बनाई जा रही सुरंग शायद पहली बार सुन रहे होंगे।
4: और यही बात है कि इस प्रोजेक्ट को खास बनाती है, स्ट्रेट शिप टनल, जो कि दुनिया की पहली बड़ी शिप टनल मानी जा रही है।
3: यह सुरंग नॉर्वे के स्टेट प्रायद्वीप यानी स्टेट पेनिसुएला में बनाई जा रही है।
4: यह इलाका समुद्री यात्रियों के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है। यहाँ मौसम जो है वो अचानक से बदल जाता है और समुद्र में तेज़ लहरें उठने लग जाती है।
3: बिल्कुल, कई बार खराब मौसम के कारण जहाज़ों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इसी समस्या को हल करने के लिए इस सुरंग की योजना बनाई गई है।
4: इस सुरंग के बनने के बाद में यहाँ पे जहाज जो है वो सुरक्षित तरीके से पहाड़ के अंदर से बनी सुरंग से गुजर सकेंगे।
3: दोस्तों, यह सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह सच है और इस पर काम भी शुरू किया जा चुका है।
4: अब बात करते हैं कि आखिर यह प्रोजेक्ट इतना खास है क्यों।
3: दोस्तों, यह सुरंग लगभग 1.7 किलोमीटर लंबी होगी। इसे इतना बड़ा बनाया जाएगा कि बड़े जहाज भी आसानी से इसके अंदर से गुजर सकें।
4: इसकी चौड़ाई और ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी कि सिर्फ छोटी नावों के लिए नहीं बल्कि बड़े समुद्री जहाज़ों के लिए भी ये बनाई जा रही है।
3: इस प्रोजेक्ट में पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया जाएगा। इसके लिए आधुनिक मशीनों और इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।
4: सोचिए दोस्तों, एक पूरा जहाज अंदर पहाड़ के अंदर से बनी सुरंग से गुजरेगा, यह आपको एक अद्भुत सी बात नहीं लग रही है।
3: बिल्कुल, यही वजह है कि दुनिया भर के लोग इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ले रहे हैं।
4: इस सुरंग का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो है सिक्योरिटी।
3: बिल्कुल, पहले जहाज़ों को खतरनाक समुद्री रास्तों से गुजरना पड़ता था, लेकिन सुरंग बनने के बाद यात्रा ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी।
4: इसके अलावा जो समय है वो भी उसकी भी काफ़ी ज़्यादा बचत होगी।
3: और व्यापार यानी ट्रेड को भी फायदा मिलेगा, जहां आसानी से तेजी से यात्रा कर पाएंगे।
4: यह प्रोजेक्ट नॉर्वे की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
3: साथ ही यह पर्यटन यानी टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा, लोग इस अनोखी सुरंग को देखने के लिए वहां पहुंचेंगे।
4: दोस्तों, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना आसान होता नहीं है।
3: बिल्कुल, पहाड़ों को काटना, समुद्र के पास निर्माण करना और जहाज़ों के हिसाब से डिज़ाइन तैयार करना, ये सभी बड़े इंजीनियरिंग चैलेंजेस हैं।
4: लेकिन आधुनिक तकनीक ने इसे इन मुश्किलों को संभव बना दिया है।
3: इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं
4: और इसमें हज़ारों इंजीनियर और मजदूर काम कर रहे हैं,
3: और यही वजह है कि यह प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है।

0: बचपन हर इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। कहानियाँ, कविताएँ, गीत और नई नई बातें सीखने का उत्सुकता यही बच्चों की दुनिया को खास बनाती है। एक समय था जब मोबाइल और इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, तब बच्चों में के मनोरंजन और सीखने का सबसे प्यारा माध्यम था रेडियो। रेडियो की मधुर आवाज़ बच्चों को कहानियों की दुनिया में ले जाती थी, उन्हें गीत सिखाती थी, नई बातें बताती थी और अच्छे संस्कार भी देती थी। आज हम बात करने वाले भारत की ऐतिहासिक रेडियो सेवा आकाशवाणी के 90 वर्षों के शानदार सफ़र की और ख़ास तौर पर बच्चों के से उनके गहरे रिश्ते की।
1: तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विशेष कार्यक्रम हमारा। तो आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही प्यारा है और यादों से भरा हुआ है। हम बात करेंगे कि आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफ़र की और यह जानेंगे कि कैसे रेडियो ने बच्चों की दुनिया को जो है वो खूबसूरत बनाया है।
0: आकाशवाणी ने बच्चों के लिए जो योगदान दिया वह वास्तव में बहुत खास रहा है। रेडियो की आवाज़ में एक अपनापन होता है जो सीधे बच्चों के दिल तक पहुंचता है। यह समय उस समय बच्चे रेडियो पर आने वाले कार्यक्रमों का बेसब्री से इंतज़ार करते थे। कई घरों में पूरा परिवार एक साथ बैठकर बच्चों के कार्यक्रम सुनता था।

0: इन कार्यक्रमों में कहानियाँ होती थी, गीत होते थे, पहेलियाँ होती थी और साथ ही अच्छी सीख भी होती थी।
1: आकाशवाणी ने बच्चों के जो मनोरंजन के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के विकास में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। यही वजह है कि आज भी पुराने समय के उन लोगों के कार्यक्रमों को याद करके भावुक हो जाते हैं। दोस्तों, आकाशवाणी पर बच्चों के लिए कई खास कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इन कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि शिक्षा और संस्कार देना भी होता है।
0: बिल्कुल, सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में बाल सभा, बाल मंच, नन्ही दुनिया और बाल वाटिका जैसे कार्यक्रम शामिल थे। इन कार्यक्रमों में बच्चों की कविताएं, कहानियां और उनकी प्रतिभाएं प्रस्तुत की जाती थी। कई बार बच्चों को खुद भी रेडियो स्टेशन बुलाया जाता था जहां वे कविता सुनाते थे, गाते थे और अपनी बातें साझा करते थे।
1: यह बच्चे के लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात होती थी। और दोस्तों, आकाशवाणी की यही सबसे खास बात है कि उसने बच्चों को सिर्फ श्रोता नहीं बनाया बल्कि उन्हें मंच भी दिया है।

0: तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के इतिहास की। तो 16 मई 1929 को अमेरिका के हॉलीवुड रोजवेल्ट होटल में पहली बार एकेडमी पुरस्कार यानी ऑस्कर समारोह आयोजित किया गया था। यह फिल्म जगत के इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। 1960 को अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थियोडोर मैनिन ने दुनिया का पहला लेज़र चलाया। यह उपलब्धि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है।
1: IPL 2026 की बात करें तो 60वें मैच में आज कोलकाता नाइट राइडर्स KKR और गुजरात टाइटंस के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और कल खेले गए IPL के मुकाबले की बात करें तो सुपर जेंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया था।
0: बिल्कुल, सनराइज हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन 12 मैचों में 508 रन बनाकर IPL 2026 स्टेट एंड अवार्ड ऑल टाइम रिकॉर्ड्स IPL T20 ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन 501 रनों के साथ दूसरे और RCB के विराट कोहली 484 रनों के साथ तीसरे स्थान पर चल रहे हैं।
1: तो दोस्तों अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, दीजिए आज हमें इजाज़त। तो मैं था आपका रेडियो दोस्त मानस और मेरे साथ थे
0: दिव्या।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 6 बजने वाले हैं। अब सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने पांच देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्नपत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान एनआईओएस द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा।

0: तालिका में आठवें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त चंचल। आज का फिल्म संगीत आधारित है विक्की कौशल पर। विक्की कौशल की चुनिंदा फिल्मों के गीत हमने चुने हैं आज, जो गीत आपको हम सुनवाएंगे। श्रोताओं, आज विक्की कौशल का जन्मदिन है, तो ये प्रोग्राम आज का उन्हीं को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं।

ने स्ट्राइक और संजू जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय किया और बैड न्यूज़ और जरा हटके जरा बच के ऐसी फिल्मों के अंदर भी उन्होंने बेहतरीन गानों पर अपनी शानदार डांस परफॉर्मेंस के लिए जाने गए। उनकी और भी बेहतरीन फिल्में हैं जिनका जिक्र हम करेंगे, पहले सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये अगला गीत।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे विक्की कौशल की मुख्य फिल्मों के बारे में। उनकी प्रमुख फिल्मों में बैड न्यूज जो 2024 में आई थी, 2023 में जो फिल्म आई उसका नाम था जरा हट के जरा बच के, 2023 में ही सेम बहादुर आई, 2022 में गोविंदा नाम मेरा, 2021 की फिल्म थी सरदार उधम, 2020 में फिल्म आई थी भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप, 2019 की फिल्म थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, 2018 में आई थी मनमर्जिया राजी संजू, ये फिल्में 2018 की है, और 2015 में आई थी मसान। और भी कुछ फिल्में हैं, पहले गीत सुन लेते हैं।

श्रोताओं, विक्की कौशल की फिल्मों में धुन की, मसान ये फिल्में भी थी। फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं संजू फिल्म का गीत, आवाज़ है सुखविंदर सिंह की।

श्रोताओं, 2019 में आई फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में आर्मी ऑफिसर के रूप में मेन रोल विक्की कौशल ने किया, जिससे वे बॉलीवुड के लीडिंग एक्टर्स में शामिल हो गए। इस फिल्म ने इन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी दिलवाया।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुत किया आपके रेडियो दोस्त चंचल ने। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 6:30 होने वाले हैं। अब जुड़ते हैं हमारे जयपुर केंद्र से, जहां से हम सुनेंगे पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर 6:40 पर जिले की चिट्ठी और उसके बाद 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू हुआ। सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुईं। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। अगले सप्ताह तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से जनगणना 2027 के तहत मकानों के सूचीकरण और गणना का काम शुरू हो गया है। आगामी 14 जून तक चलने वाले इस चरण में प्रगणक घर घर जाकर मकानों की निर्माण सामग्री और उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में 33 सवाल पूछ रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में इस कार्य के लिए 4,163 प्रगणक तैनात किए गए हैं। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने आमजन से सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की है। उधर पाली जिले में भी 3,000 से अधिक प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए वास्तविक लोकेशन के साथ आंकड़े जुटा रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपित मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने 14 मई को गिरफ्तार की गई मनीषा वाघमारे के माध्यम से नीट परीक्षा के संभावित उम्मीदवारों को जुटाया और पुणे स्थित उनके आवास पर इन विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाईं। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9

0: आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। कल गिरफ्तार किए गए 2 अन्य आरोपितों को पुणे की अदालत में पेश किया गया और पारगमन रिमांड के बाद दिल्ली भेज दिया गया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने देश भर में 6 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई के इस दौर में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ही देश की संप्रभुता की एकमात्र गारंटी है। श्री शेखावत आज जोधपुर में रक्षा प्रयोगशाला के 68वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में अब केवल पारंपरिक हथियार ही युद्ध का माध्यम नहीं है, बल्कि पेमेंट गेटवे और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसी तकनीकें भी सामरिक हथियार बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि देश रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री शेखावत ने वैज्ञानिकों से विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
1: और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के दौर में विश्व प्रवेश कर चुका है, ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब का दौरा कर स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न तकनीकी नवाचारों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के प्रयासों को देखा। मुख्य सचिव ने एआई और आधुनिक तकनीक पर आधारित शिक्षा से जुड़े स्टार्टअप्स को पीएम श्री विद्यालयों से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली स्तर पर ही बच्चों को उन्नत तकनीक और नवाचारों को समझने का मौका मिलेगा।
2: विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो आईस्टार्ट के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। आज मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज थे, न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे। तो काफी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है।
3: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के

0: लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर के मणाई में एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस पर 51 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, साथ ही बजट घोषणा के अनुसार स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए की लागत से विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनाया जाएगा। श्री पटेल ने बताया कि करीब 400 विद्यालयों को सीएम राइज स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा, साथ ही प्रदेश के 1000 स्कूलों में एआई आधारित लर्निंग लैब्स स्थापित की जाएंगी। जयपुर पुलिस पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई नवाचार कर रही है। इनमें एआई आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप शामिल हैं। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप के बारे में बताते हुए जयपुर के पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने कहा कि ये बहुभाषी ऐप स्मार्ट नेविगेशन और त्वरित सहायता जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
1: एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लो ज्यादा है, उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी इस ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा, किसी टूरिस्ट को कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प आ सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं, इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर।
0: जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से जूनियर समर कैंप की शुरुआत हुई। पर्यटन कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने इस शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। 20 जून तक आयोजित होने वाले इस कैंप में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए इस वर्ष 500 से 600 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाए हैं। जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा गोगिया ने बताया कि कैंप के दौरान बच्चों को रंगमंच के साथ साथ कला सहित विभिन्न विधाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
2: नृत्य से संबंधित, संगीत संबंधित जो गतिविधियां हैं जिसमें बांसुरी वादन, गायन और पियानो है, इसमें बच्चे गिटार भी सीख सकते हैं। इसी तरह से कथक नृत्य, राजस्थानी फोक डांसेस, इनका समावेश किया गया है। साहित्यिक में स्टोरी ट्रीज, इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे बच्चे कहानी लेखन, कहानी वाचन सीख सकें। लगभग 550 से 600 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं। एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हैं और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाए।
0: और अब मौसम। प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। चिलचिलाती धूप और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग के अनुसार अगले सप्ताह प्रदेश के अधिकांश भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी जिलों में दिन का पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राज्य में एक बार फिर से हीट वेव का दौर शुरू होगा। वहीं 18 मई से पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। झुंझुनू में जागरूकता रैली निकाली गई। ANM ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं के द्वारा निकाली गई इस रैली के माध्यम से डेंगू के बचाव और मच्छरों की रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई। जैसलमेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की ओर से मच्छर रोधी गतिविधियां की गई और लोगों को समझाया गया। वहीं करौली में जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेमो, पोस्टर, पैम्पलेट और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू। CBI ने आज नीट UG 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। अगले सप्ताह तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर भीलवाड़ा जिले में शिक्षा के अधिकार को धरातल पर उतारने की मुहिम जारी है। राज्य सरकार की ओर से पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के मामले में भीलवाड़ा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। ये लक्ष्य 1 अप्रैल से शुरू किए गए प्रवेशोत्सव के दौरान हासिल किया गया है। इसके तहत जिले में चिन्हित किए गए करीब 15,500 बच्चों में से 14,790 बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिया जा चुका है। अब भीलवाड़ा जिले में लगभग 5.25% पात्र बच्चे ही स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, जो प्रदेश में सबसे कम है। जिले के तिलोली गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायी पहल देखने को मिली। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 10वीं और 12वीं के 6 मेधावी विद्यार्थियों को शानदार परिणाम देने पर हवाई यात्रा की सौगात मिली। युवा भामाशाह दशरथ सिंह राठौड़ ने इन होनहारों को जयपुर से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा पर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना और अन्य छात्र छात्राओं को मेहनत के लिए प्रोत्साहित करना है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी हाल ही में भीलवाड़ा प्रवास पर रहे। उन्होंने मांडल विधानसभा क्षेत्र में पेयजल विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जलदाय मंत्री ने कहा कि सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने के मिशन पर काम कर रही है। जिन इलाकों में भी पीने के पानी की समस्या है, वहां टैंकरों के जरिए पानी आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बीसलपुर बांध में पानी की काफी आवक हुई है। ऐसे में अजमेर, ब्यावर, टोंक और जयपुर जिले में पानी की नियमित आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में पानी की दिक्कत नहीं है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बीते दिनों भीलवाड़ा आए। उन्होंने जैन समुदाय के संगठन जीतो की ओर से आयोजित सामूहिक नवकार मंत्र जाप कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज के दौर में धर्म और संस्कृति से जुड़े रहना जरूरी है, जिससे नई पीढ़ी को भी इसका लाभ मिले। जीतो के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिले की चिट्ठी में अब बात ग्राम रथ अभियान की। हालांकि जयपुर में इस महीने होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ईंधन बचत की कवायद के कारण इसका आयोजन अभी रोक दिया गया है। ग्राम 2026 व्यापक प्रचार प्रसार और लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए ही ग्राम रथ अभियान शुरू किया। इसके तहत सभी जिलों के ग्राम पंचायतों पर ग्राम रथ पहुंच रहे थे। भीलवाड़ा जिले में भी जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशन में ग्राम रथ अभियान संचालित किया गया। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने भी जिले का दौरा कर ग्राम रथ का जायजा लिया। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर खरीफ फसल की बुवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज और खाद के भंडारण के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी भी जिले के प्रवास पर रही। उन्होंने सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम रथ अभियान में शिरकत की। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ग्रामीण रथ अभियान के तहत आसींद क्षेत्र में रात्रि चौपाल में शामिल हुए। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के मौके पर जिले में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए। वहीं पुलिस प्रशासन की सतत निगरानी के चलते इस दौरान जिले में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ। जिले में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। हालांकि मौसम में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले में कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई और कुछ जगह ओले भी गिरे। हालांकि थोड़ी राहत के बाद उमस और तेज गर्मी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि गर्मी में पेय पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए। उन्होंने प्रचंड गर्मी के मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं से विशेष सावधानी रखने को कहा है। भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: खास समाचार। जनगणना 2027 रा तहत राज्य में आज मकाना री लिस्ट बनावण रो काम शुरू थयो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला में सीबीआई आज एक और आरोपित ने पकड़ियो। हाल ताई 9 जना गिरफ्तार करी चिया। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूलों में नुआ कोर्स शुरू करया चावेला। और प्रदेश का घणखर हलका में जबरदस्त गर्मी। आवता सप्ताह में पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़बारा आसार। समाचार अंसागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। जनगणना 2027 रा तहत प्रदेश में आज मकाना री लिस्ट बनावण रो काम शुरू फेक्यो। 14 जून तक चलन वाला इन काम में प्रगणक घर घर जार मकान बनावण में काम ली रीजी सामग्री और मौजूद सुबीता ने बारा में 33 सवाल पूछ रहा है। भीलवाड़ा जिला में ई काम सारू 4163 प्रगणक लगाया है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु जनताओं प्रगणका ने सही जानकारी देर प्रशासन री मदद करन री अरज कीनी है। पाली जिला में आई 3072 प्रगणक मोबाइल ऐप रे जरिए वास्तविक लोकेशन सागे जानकारियां भेड़ी कर रहा है। नीट यूजी 2026 परीक्षा रा पेपर लीक मामला में सीबीआई आज एक और आरोपित महाराष्ट्र रा पुणे री बोटनी री शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंधारे ने गिरफ्तार कीनी। वाने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी विशेषज्ञ रा तौर नियुक्त कीनी ही। जांच एजेंसी रे मुजब वारी जूलॉजी और बोटनी रा पेपर ताई पूरी पहुंच ही। सीबीआई रे मुजब वा 14 मई ने पकड़ी जी आरोपित मनीषा वागमारे रे मार्फत नीट परीक्षा रा उम्मीदवारा ने वारा पुणे रा घर माए खास कोचिंग दीनी। ई मामला में हाल ताई दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे और अहिल्यानगर 9 आरोपिता ने पकड़ी चिया है। काल गिरफ्तार करी जिया 2 आरोपिता ने पुणे री अदालत सामी पेश करी जिया जठाऊ वाने अदालत दिल्ली भेज दीना। लाला 24 घंटा माए सीबीआई नैरी नैरी ठोड़ाऊ कई आपत्तिजोग कागजात लैपटॉप बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त कीना है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि एआई रा दौर माय देश री हिफाजत रा हलका माय खुद रे पाण उबो वेवणोई देश री संप्रभुता री गारंटी है। वे आज जोधपुर माय रक्षा प्रयोगशाला रा 68वां स्थापना दिवस रे मौके राखी जिया कार्यक्रम माय बोल रहा हा। केंद्रीय मंत्री कहो कि दुनिया रा बदलता हालात माय अब केवल पारंपरिक हथियार ही युद्ध रो जरियो नी है बल्कि पेमेंट गेटवे और सेमीकंडक्टर चिप बनावन सरीखी तकनीक आई लड़ाई रा हथियार बन की है। वह कहो कि देश हिफाजत रा हलका माय काम आवन वाला साजो सामान दिसावर उ मंगावन री बजाय देश माई बनार खुद रे पाण उबो वेवन ओड़ी तेजी बढ़ रियो है।
1: और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के विश्व दौर में विश्व प्रवेश कर चुका है ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण विषय। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
0: राजस्थान विधानसभा बनिया 75 साल वे वन रे मौके 18 मई ने विधानसभा रा नुआ लोगो रो विमोचन और ऐतिहासिक दरूजा रो नामकरण करियो जावेला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बतायो कि लारला 2.5 साल माए राजस्थान विधानसभा माए डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था, डिजिटल संग्रहालय, संविधान दीर्घा और जन दर्शन सरीखा कई खास नवाचार करी जिया जाऊं इनरी देश माए खास ओळखाण बनी है। इन खास कार्यक्रम माए राज्यपाल हरिभाव बागड़े, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विपक्षरा नेता टीकाराम जूली और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल समेत कई मान्योड़ा लोग शामिल फैला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर रा भामाशाह टेक्नोहब रो दौरो कर स्टार्टअप्स और नौजवान कारोबारियां कानियों करया जा रहे तकनीकी नवाचारां री जानकारी लीनी। वे रक्षा शिक्षा

0: ਅਰ ਸਵਾਸਥਯ ਅਰ ਪੋਸ਼ਣ ਸਰੀਖਾ ਖਾਸ ਹਲਕਾ ਮਾਏ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਅਰਵਾਨੀ ਸਰਾਹੁਣਾ ਕੀਨੀ ਮੁੱਖ ਸਚਿਵ AI ਅਰ ਨੂਵੀ ਤਕਨੀਕ ਮਾਥੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜੁੜਿਆ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ PM ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜੋੜਵਾ ਮਾਥੇ ਜ਼ੋਰ ਤੀਨੋ
1: विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो आईस्टार्ट के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। आज मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज थे, न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे। तो काफी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत और नीदरलैंड दुनिया रा संकटन और सामोकरण सारू भरोसेमंद साफ और आवता बगत सारू तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनावन रे बारा माए मिलर काम कर रहा है। वह 5 देशों रा दौरा रा तेत आज नीदरलैंड रा हेग माए भारतीय समुदाय रा लोगों ने संबोधित कर रहा है। श्री मोदी ऊर्जा संकट सरीखी चुनौतियां रो निपटारो बेगो नी वेवन री सूरत माए दुनिया रा विकास माथे असर पड़बा सागे मोटी आबादी रे गरीबी री ओर बढ़वा री शंका जताई। प्रधानमंत्री कहो कि 21वीं सदी माए भारत मौका री धरती बैन अर सामी आयो है जो तकनीक अर इंसानी मूल्यों रा आधार आगे बढ़ रियो है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है, हम सभी देख रहे हैं। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रे मुजब व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूलों में नुआ कोर्स शुरू करिया चावेला। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर जिला रा मणाई में एक स्कूल में राखी जा कार्यक्रम में आ जानकारी दीनी। वह कहो कि ई काम माथे 51 करोड़ रुपये बत्ती रकम खर्च करी जावेला। मंत्री बतायो कि बजट में करी जा ऐलान रे मुजब स्कूलों में बुनियादी ढांचा रा विकास सारू 2000 करोड़ रुपया रो विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनायो जावेला। श्री पटेल बतायो कि करीब 400 स्कूलों ने CM राइज स्कूलों रा तौर विकसित करी जावेला और 1000 स्कूलों में AI आधारित लर्निंग लैब्स खोली जावेला। सैलानियारी हिफाजत और सुबिता सारू जयपुर पुलिस AI आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप सरीखा नवाचार कीना है। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप री जानकारी देता थका जयपुर रा पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल कहो कि न्यारी न्यारी भाषावां माए काम करण वालों ओ ऐप स्मार्ट नेविगेशन और तुरंत मदद सरीखा सुबिताई मुहैया करावेला। वे बतायो कि ई ऐप रे मार्फत सैलानिया ने सुरक्षित गेलां री जानकारी सत्यापित गाइडां री लिस्ट और मुश्किल भगत माए मदद मिल सकेला।
3: एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लो ज्यादा है, उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी इस ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा, किसी टूरिस्ट को कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प पा सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं, इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर।
0: जयपुर राज जवाहर कला केंद्र में आज जूनियर समर कैंप शुरू हुआ। पर्यटन कला और संस्कृति विभाग के शासन सचिव शुचि त्यागी इनरो उद्घाटन किन्नो। 20 जून तक चलने वाला इन कैंप में मोटी तादाद में बच्चा नाम मंडाया है। जवाहर कला केंद्र री अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा गोगिया बतायो कि शिविर में बच्चा ने रंग मंच सागे कला समेत न्यारी न्यारी विधावारी व्यावहारिक सिखावण दी जा रही है।
4: नृत्य से संबंधित, संगीत संबंधित जो

0: गतिविधियां हैं जिसमें बांसुरी वादन, गायन और पियानो है, इसमें बच्चे गिटार भी सीख सकते हैं। इसी तरह से कथक नृत्य, राजस्थानी फोक डांसेस, इनका समावेश किया गया है। साहित्यिक में स्टोरी की इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे बच्चे कहानी लेखन, कहानी वाचन सीख सकें। लगभग 550 से 600 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं। एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हैं और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाएगा।
1: प्रदेश का घनखर हल्का माए जोरदार गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुजब लाडला 24 घंटा माए फलादी 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सागे सब 19 ठोड़ रहे हो। महकमा के मुजब आवता सप्ताह प्रदेश का घनखर हल्का माए पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़बारा आसार है। इन दौरान उगनी रातुनी हल्का माए तापमान 45 डिग्री सेल्सियस ताई पुगण की संभावना है। इन बीच 18 मई आतुनी और उत्तराध हल्का माए जोरदार बायरो बाजण की संभावना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके प्रदेश में आए कई कार्यक्रम रखी चिया। झुंझुनू माए एएनएम ट्रेनिंग सेंटर री टावरिया री ओरों जागरूकता रैली निकाल और डेंगू बचाव और मच्छरों की रोकथाम के बारे में जानकारी दी जी। जैसलमेर माए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रा कर्मचारियों की ओरों मच्छर मारण सारो जतन करी जिया और जनता ने जानकारी दी जी। करौली माए जांच करें, सफाई करें और ढकें मुद्दा माथा चलाया जा रहा अभियान रा तहत शहरी और गांवी हल्का माए डेमो पोस्टर पंपलेट और सोशल मीडिया के जरिए जाग जगाई जा रही है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। जनगणना 2027 रा तहत राज्य में आज मकाना री लिस्ट बनावन रो काम शुरू हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला में सीबीआई आज एक और आरोपित ने पकड़ियो। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूलों में नुआ कोर्स शुरू करया जावेला। और प्रदेश रा घनखर हल्का में जबरदस्त गर्मी, आवता सप्ताह पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़वारा आसार। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार,
2: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर शाम के 7 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम भावना भाई सर, राम राम
1: और राम राम सरजू भाई सर, राम राम।
0: खेती और घर कार्यक्रम होने वाला हला किसान भाई बहना ने आपानो
1: राम राम सा। देखो सरजू भाई, आप ही कार्यक्रम में आया और बात बात की जानकारी लेने आया।
0: हाँ सर।
1: और लारे लारे मन भावन राजस्थानी लोकगीत भी सुनावांगा और योजना संबंधी और मौसम जानकारी भी किसान भाई ने दांगा सा।
0: बिल्कुल सा। तो देखो जटे, आपा खेती और घर कार्यक्रम में पधारिया हाँ और चौपाल रिवात में आया हाँ। और अठीने देखो ये मांगी भाई, खमाणी भाई, मेघाबा, ये मांगीलाल जी, हंगले जो किसान भाई लोग है, किसान बेनान, किसान भाई लोग सब जना जो है देखो अब आ रणा चापा डंडा बांधी बंदा इन्हें देखो रेडियो सेट पे आई बैठ गया है कि आज जो माणी बेना है माने चौपाल री बात में कई कई जानकारियां लाएगा सा।
1: सही बात है सा। और तो सरजू भाई आपको तो अपने जानकारी रे पिटारा ने खोला नहीं सा।
0: बिल्कुल सा।
1: और चौपाल री बात कहां तो देखो सा, आज किसान भाई ने जानकारी दे रहा हाँ, मुर्गी पालन और वणियों के सर अतिरिक्त आए किसान भाई अपने मुनाफो और आय कमाई सके अंडे बारे में जानकारी दांगा सा।
0: बिल्कुल सा। तो देखो जेटे मुर्गी पालन और अन्य आय री बात आपा करी रहे हाँ, तो अपने किसान भाई बहना ने बतावा भावना भाई सा कि देखो मुर्गी पालन जो है वो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में अतिरिक्त आय रो एक बेहतरीन और भरोसेमंद जरियो बनी गयो है।
1: सही बात है सा। और
0: अणी ने कम निवेश करवा में शुरू करियो जी सके है।
1: हाँ हाँ।
0: और यो जो है कि आपा कहवा कि थोड़ा सा महीना में बहुत ही बढ़िया लाभ देवे, जो भी शुरू में भी आपने लाभ मिलवा लाग जा है।
1: हाँ हाँ।
0: और लारे लारे देखो मुर्गी पालन वेवा वाले जत्री भी आए है, वह भी अपने किसान भाई लोगों के वास्ते बहुत ही बढ़िया बात है सर।
1: सही बात है। देखो सर जैसे

0: कर रहे हैं कि भाई मुर्गी पालन आपने किसान भाई क्यों चुने।
1: हाँ सर।
0: तो देखो सर, मुर्गी पालन एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि स्वरोजगार एक सशक्त माध्यम है। और जट अंडे लाभ री बात कर रहे हैं, हाँ तो देखो सर, सबों पहली बात कर रहा सर जो भाई कि कम पूंजी की आवश्यकता है, तो छोटा स्तर पर इन्हें घर अपने जो पिछवाड़ो बैकयार्ड जो जगह है उन्हें बहुत ही कम खर्चों इन्हें शुरू की दो जय सके सा।
1: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हूँ सर। और देखो आड़ी रे महीने बहुत ही ज्यादा रिटर्न मिले है।
0: हाँ हाँ।
1: और तेजी रिटर्न मिले है। हाँ सर, जिस तरह आप कह सका कि घनी हारी अना रे ये मुर्गी पालन करे।
0: हाँ हाँ।
1: आड़ी रे महीने 40-45 दना महीने उन्हें वेचवर वास्ते भी मुर्गी तैयार वही जावे है।
0: सही बात है।
1: तो अणी तरीका हूँ देखो, वे यदि अंडा देवा वाली मुर्गियां है तो वे 5-6 महीना में भी वनर उत्पादन शुरू कर दे भे।
0: सही बात
1: तो
0: है।
1: आनी वास्ते छोटो सो स्थान भी वेगा नहीं भावना वैसा।
0: हाँ हाँ।
1: तो वणी रे वास्ते भी बहुत ही बड़ी जगह में आप यो काम कर सको हो, अने वास्ते बहुत बड़ा खेतरी आवश्यकता भी नहीं वेवे।
0: हाँ हाँ।
1: और एक छोटो सो शेड बनाई भी आप काम अनो शुरू कर सको हो।
0: सही बात है। देखो सर, सरजू भाई सर जेते बात करा जैविक खादरी।
1: हाँ सर।
0: तो जो मुर्गिया रो बीट मल जो है खेता में आपने कह सका की नाइट्रोजन युक्त बेहतरीन जैविक खादों काम कर रहे है। और जानू कही है कि आपने खेती की लागत भी कम वेरी है। और हाथे हाथे किसान भाई ने बतावा कि देखो साहब, मुर्गिया री कई कई नस्ला जो है वी वापर सके।
1: हाँ
0: तो व्यवसाय रे उद्देश्य आप ही वणी सापू नस्ल रो चुनाव करनो किसान भाई रे वास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और जटे बात करा अंडा उत्पादन रे वास्ते, तो लेयर मुर्गिया मुख्य रूप आप कहवा कि अंडा देवा रे लिए पाली जावे। और व्यावसायिक तौर पर बीवी 300 या हाई लाइन जैसी नस्लां जो है प्रचलित है सा।
1: बिल्कुल सा भावना वैसा। देखो अणी रे महीने की मांस उत्पादन रे वास्ते भी ये जो मुर्गियां है।
0: हाँ हाँ।
1: ये बहुत ही तेजियों बड़े है, जने कोव और रोज भी बोले है।
0: हाँ हाँ।
1: आरी जो ये नस्ल है ये मांस रे वास्ते बहुत ही अच्छी मानी जावे है। जने इस लारे आपा देखा कि अन्य दोहरे उद्देश्य री जटे आपा बात करा और अपना किसान भाई बहना ने आपा बतावा।
0: हाँ हाँ।
1: कि जो अंडा है मांस है दोई रे वास्ते उपयुक्त है। अणीरे महीने कड़कनाथ RIR और प्रताप धन और जैसी नस्लां जो है वे भी भावना बैसा आनी रमी ने शामिल है सा।
0: सही बात है। और हाथे हाथे बात करा देसी नस्लारी, तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रिया और वन राजा जैसी उन्नत देसी नस्ला बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि अणा में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक वे वे। देखो सर, सज्जू भाई सा हाथे हाथे अणारे आवास और प्रबंधन रे भी तो जानकारी किसान मैंने दा।
1: हाँ सा।
0: कि देखो सा, मुर्गिया रे स्वास्थ्य और विकास से लिए एक अच्छो शेड बनो अनिवार्य है। जटे स्थान रे चुनाव री बात करा, तो शेड हमेशा ऊंचा स्थान पर बनो चावे ताकि जल जमाव नहीं वे। अन्य लंबाई पूर्व पश्चिम री ओर वेनी चावे ताकि सीधी धूप और तेज हवाओं बचाव वे सके सा।
1: बिल्कुल सा भावना वैसा। देखो या तो भी स्थान और री चुनाव री बात।
0: हाँ हाँ।
1: तो अभी अपना किसान भाई बहना ने बतावे कि देखो ये सब करवार वास्ते एक जगह री जरूरत भी विया करे।
0: हाँ हाँ।
1: तो एक ब्रॉयलर मुर्गी ने लगभग 1 वर्ग फुट और लेयर ने 2 वर्ग फुट री जगह री आवश्यकता वे।
0: हाँ हाँ।
1: लारे लारे साफ सफाई भी जरूरी है कि फर्श पे लकड़ी रो बुरादो है, चावल रो छिलको है, ये तो विचारना ही पड़े।
0: हाँ हाँ।
1: बतारे बाद में अणा ने समय समय पे बदलता रेवा ताकि कई वेगा कि साफ सफाई रो आपा ध्यान रखांगा तो संक्रमण नहीं फैलेगा और संक्रमण बचाव भी वे जाएगा सा।
0: सही बात है।
1: और जटे संक्रमण बचाव वेगा जदी जई ने यो काम जो है आपा बहुत ही आसानी कर सका।
0: सही बात है। और देखो सा हाथे आते सरजू भाई सा बात करा आहार और पोषण री।
1: हाँ सा।
0: तो मुर्गी पालन में लगभग 70% खर्च दाना पे वे और अंडे वास्ते दाना रो सही प्रबंधन जरूरी है। सबों पहली बात करा संतुलित आहारी, तो मुर्गिया ने मक्का सोयाबीन री खली चोकर खनिज मिश्रण रो सही अनुपात देनो चावे। हाथे हाथे देखो सा शुद्ध पानी पीवारे वास्ते देनो चावे कि मुर्गिया ने हमेशा साफ और ताजा पानी मिलनो चावे। पानी में समय समय पर विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट मिलाइन दीदा जय सके सा।
1: बिल्कुल सा। और अणी में जटे आप बचत री बात करा भावना भाई सा, तो देखो सा अपना किसान भाई बहना ने आपा बतावा कि अगर आप देसी मुर्गियां पाली रहा हो।
0: हाँ हाँ।
1: और वना ने रसोई रो बच्चों तक को खानो है, हरी सब्जियां है, खेतरा अवशेष खिलाई ने लागत कम कर सक्रिया हो।
0: हाँ हाँ।
1: तो यो भी आपरे वास्ते अतिरिक्त बचत वेगी।
0: सही बात।
1: लारे लारे जटे एक बीमारी नियंत्रण टीकाकरण री बात आवे कि कोई भी जानवर वो।
0: हाँ हाँ।
1: तो अनारे महीने जीव जंतु ये सब है, तो अनारे महीने के टीकाकरण भी बहुत जरूरी है।
0: सही बात।
1: क्योंकि देखो खास करीन तो मुर्गियारी बात आवे तो मुर्गियारे महीने रानी खेत बर्ड फ्लू गंबो

0: कोलेरा जैसी गंभीर बीमारियां जो हुए वे बहुत ज्यादा तेजी फैल सके है।
1: हाँ।
0: तो अणियों वंचावरे वास्ते टीकाकरण जरूरी है। जनीरे महीने चूजा जो वेवे वनारे जन्म पहला हफ्ताओं टीकाकरण शुरू कर देनो चावे।
1: हाँ हाँ।
0: और लारे लारे जेब सुरक्षा भी करनी चावे। तो कही है कि बाहरी जो व्यक्ति है वे शेड में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
1: हाँ हाँ।
0: दरवाजे पे लाल दवारो छिड़काव जरूर करनो है। अणि तरीकरो पानी राखनो है ताकि कही वेगा कि पैर धोई नहीं वे महीने जाएगा तो अणि संक्रमण जो है ये सब वंची सकेगा।
1: सही बात है। देखो सब बीमार पक्षी रो अलगाव भी रखनो है कि यदि आपनों कोई मुर्गी सुस्त दिखे तो तुरंत इन्हें झुंडू अलग कर देनो है। और जेते बात करिए सरजू भाई सा अतिरिक्त आय रे अवसरी तो मुर्गी पालन न केवल अंडा और मांस मिले बल्कि दूसरा कई तरीकों अपने कमाई की दिख जा सके। तो सब पहली जेते बात की थी अंडा और मांस की बिक्री दी तो या तो प्राथमिक आय है स्थानीय बाजार या होटल साथ सीधो संपर्क करें बेहतर दाम अपने मिल सके। जटे चूजा रे व्यापारी बात करें तो यदि आप एक छोटी हैचरी मशीन लगाई ले तो आप खुद चूजा तैयार करें आसपास के किसाना ने बेच सको। हाथे हाथे बात करें जैविक खादरी तो मुर्गियारी बीट ने इकट्ठो करें मैंने खाद रे रूप में नर्सरी या किसाना ने बेचनो एक अतिरिक्त आय है। और प्रशिक्षण और परामर्श की बात करा तो अनुभव व्यवहार बाद ही आप दूसरा लोगों ने प्रशिक्षण देन भी शुल्क ले सको सा।
0: बिल्कुल हाची बात कह रहा हो सा। और लारे लारे देखो सरकारी योजना और सहायता री बात आवे।
1: हाँ
0: हाँ। तो अनिरे महीने भी आपा किसान भाई बहना ने बतावा कि नरे हारा किसान भाई लोग जो है वे नरी बार वणा ने पतो ही नहीं रेवे कि सरकारी कई कई योजना आई है या सरकारी द्वारा वणा ने कई सहायता प्रदान करी जा रही है।
1: सही बात
0: तो अनिरे महीने भारत सरकार और राज्य सरकार जो है पशुपालन अवसंरचना विकास कोष और राष्ट्रीय पशुधन मिशन रे तहत सब्सिडी और ऋण प्रदान कर रहे भावना वैसा। तो राजस्थान जैसा राज्य जो है वणी में विशेष रूप ग्रामीण विकास रे वास्ते नरी हारी योजनाएं संचालित है। जनीरे महीने 25% लगाई ने 50% तक सब्सिडी रो प्रावधान है सा।
1: सही बात है। देखो सर सरजू भाई सा या तो आप सरकारी योजना और सहायता री बात की दी।
0: हाँ सा।
1: और किसान भाई ने सफलता रे लिए सुझाव ना कि छोटा हूँ शुरुआत करनी है मतलब सबो पहली 50-100 मुर्गिया रे अनुभव लेनो है पचे वन्ने धीरे धीरे विस्तार करनो है। हाथे हाथे बात करनी है मार्केट सर्वे री तो पालव पहली यो पतो करनो चाहे कि अपने क्षेत्र में मांस री मांग अधिक है या अंडा री। हाथे हाथे रिकॉर्ड रखनो भी जरूरी है कि रोज रो दाणो दवा बिक्री रो लिखित हिसाब रखा ताकि लाभ और हानि रो पतो चल सके। तो कुल मिलाइन तो सरजू भाई साहब ने यो कहना है कि मुर्गी पालन एक ऐसो व्यवसाय है जिन्हें आप खेती रे साथ साथ मतलब आसानी इन्हें कर सका और अगर वैज्ञानिक तरीकों और सही प्रबंधन के साथ इन्हें अपनायो जाएगा तो यह न केवल अपने घर की पोषण संबंधी जरूरतों ने पूरा करेगा बल्कि पारिवारिक आर्थिक स्थिति ने भी मजबूती प्रदान करेगा सा। तो देखो सा या तो वेगी जानकारी सरजू भाई सा मुर्गी पालन और अतिरिक्त आय री। और देखो सा कार्यक्रम रे सिलसिला ने दा अटे विराम और अपने किसान मैंने सुनावा एक मनभावन राजस्थानी लोकगीत सा।
0: हाँ सा।

0: हाँ तो सरजू भाई साहब देखो सा अतरो बढ़िया मनभावन राजस्थानी लोकगीत आपी किसान मैंने सुनायो और
1: हाँ
0: आपी भी
1: सा
0: आने गीत रो आनंद लीदो सा। और देखो सा अबे टाइम वीडियो है आपी किसान भाई ने अवगत करावा मौसम संबंधी जानकारी
1: बिल्कुल
0: री,
1: सा
0: ताकि किसान भाई हावचित रहे और वही हिसाबों से अपने सामान्य खेती बाड़ी रहे हिसाबों तैयारी कर सके और पशुपालन रो भी धांडा चौपारो भी ध्यान रख सके। तो देखो सर जिते बात करें हाँ कि मई रो मध्य समय आपी जाना हाँ कि अत्यधिक गर्मी और लू रो वेवेसा। और जटे आपी बात करा कि अबार जो 16 मई की बात करें हाँ तो तापमान जो है अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस तक रियो है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहेगा सा।
1: बिल्कुल सा देखो जटे आसमान री बात करा और आसमान तो बिल्कुल साफ रहेगा, लारे लारे तेज धूप खिली भी रहेगी। दोपहर के समय में गर्म पछुआ हवाएं चालवारी भी प्रबल संभावना है,
0: हाँ
1: पर
0: हाँ
1: सावधानी भी अणि में राखनी है क्योंकि देखो कतरी बार मौसम एकदम चेंज वेता देर ही नहीं करे है।
0: सही बात है
1: और
0: सर।
1: दोपहर 12 बजे बाद शाम 4 बजे बाद

0: बीच बारी गतिविधियों बचनो है,
1: हाँ
0: लोम वचवारे वास्ते भी आपने पर्याप्त पानी पीणो है, पेती कोशिश आपने तरल पदार्थ है बनारो ही सेवन करनो है सा।
1: सही बात है। और देखो सर, जैसे आप ही सामान्य कृषि संबंधित जानकारी की बात करा तो देखो सर, अणी समय राजस्थान में जायद की फसल अंतिम चरण में वे और खरीफ की तैयारी शुरू वेवा लागे। तो सब पहली बात करा सिंचाई प्रबंधन री, तो वाष्पीकरण अधिक वेवा के कारण फसल ने पानी की अधिक आवश्यकता वेवे। मूंगफली और सब्जियां में सिंचाई हमेशा शाम रे समय या सुबह जल्दी उठन करनी चाहे। दोपहर में सिंचाई करवाओ पानी गर्म वेन जड़ा ने नुकसान पहुंचे सके सा।
0: बिल्कुल सा। और जटे आप खेत री तैयारी री बात करा भावना भाई सा,
1: हाँ हाँ,
0: और किसान भाई बहना ने आप बतावा कि देखो खरीफ मानसून री फसल रे वास्ते खेता ने खाली करी ने वनी जुताई करी लेनी है,
1: हाँ हाँ,
0: पछे वना ने कुछ टाइम रे वास्ते खुला छोड़ी देना है।
1: सही बात है।
0: अनियो कई वेगा कि मिट्टी रे महीने जतरा भी छिपिया तका हानिकारक कीट है,
1: हाँ हाँ,
0: और अंडा है वे वनी बीमारी और तेज धूप वे नष्ट वे जाएगा। केवारो मतलब जो हानिकारक कीट है और हानिकारक अंडा मिलिया तका है तो वे तेज धूप नष्ट वे जाएगा।
1: सही बात
0: लारे,
1: है।
0: लारे सब्जी संरक्षण री बात करा तो कद्दू वर्गीय सब्जियां जो है
1: हाँ,
0: बनीरे में महीने आपा ले सका, लौकी वेगी, तोरई वेगी, करेला वे गया। अनिरे महीने कई वेवे की लाग लाल रंग रा जो रंग वे वनो प्रकोप ज्यादा वे जावे। तो
1: हाँ, हाँ,
0: अंडे नियंत्रण रे वास्ते जैविक कीटनाशक जो वेवे बनो किसान भाई लोगों ने प्रयोग जरूर करनो चाहिए।
1: सही बात है। और देखो सर, सज्जू भाई से एक जानकारी और देनी चाहिए हूँ कि अपने किसान भाई ने सलाह दे दी जावे कि वी हाथ मृदा परीक्षण भी कर ही ले और वनडे वास्ते 30 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी रो नमूनो इकट्ठो करें, प्रमाणित एजेंसी मृदा परीक्षण करावे सा।
0: बिल्कुल सा। और अनिस लारे भावना भाई सा जटे बैंगन री फसल री बात करा तो बैंगन जो है वो और टमाटर री फसल ने प्ररोह फल छेदक कीट जो वेवे बचाना जरूरी है और वने बचावरे वास्ते ग्रसित फल जो है वनारे प्रोहरा ने इकट्ठा करीने नष्ट करी देना है। अगर कीट री संख्या ज्यादा है तो वनीरे महीने कीटनाशी रो छिड़काव जरूर कर लेनो है और अणी तरीको वनीरे पानी में घोल करीने वनी छिड़काव करना, छिड़काव जदि करनो है भावना भैसा जदि की आपनो आसमान साफ रहे तो यह बात किसान भाई लोगा ने ध्यान वेनी चाहे।
1: सही बात है। और देखो साहब, मूंग री बात करा तो देखो साहब, बढ़ता तापमान ने देखता तका किसान भाई ने सलाह दी दी जावे कि वे ग्रीष्मकालीन मूंग री फसल में निश्चित समय अंतराल पर सिंचाई करे सा।
0: बिल्कुल सा। और देखो अणीरे महीने आप कपास री बात करा तो अणी सप्ताह महीने किसान कपास री बुवाई शुरू करी लेनी है। उन्नत किस्मा री बात करा तो हाइब्रिड है, DCH है, BT कपास है, PRC है, तो ये अणी तरीका जतरा भी है कि पारस चेतक है, CH है, तो अणा सब किस्मारी उन्नत किस्मारे चुनाव करी ने पछे अगर किसान भाई लोग कपास री बुवाई करेगा जदि जई ने किसान भाई लोगों ने कपास री बुवाई उत्पादन हो मिलेगा।
1: सही बात है। देखो सर, सज्जू भाई सा हाथे थे जानकारी दा बेल वाली सब्जियां री,
0: हाँ,
1: तो कुष्मान कुली जो सब्जियां हैं वणा में लाल भ्रंग कीट अंकुरित और नई पत्तियां ने खाइन फसला ने नुकसान पहुंचावे। अंडे रोकथाम रे वास्ते कार्बेरिल 5% चूरण 25 किलो प्रति हेक्टर दर सुबह या शाम रे समय भुरकाव करनो है सा।
0: बिल्कुल सा। और अनिरे महीने आप ग्रीष्मकालीन हरा चारा री बात करा,
1: हाँ हाँ,
0: तो गर्मियारा महीना में हरा चारा री काफी कमी देखवाने आवे है।
1: सही बात है।
0: वास्ते हरो चारा वाली जो फसला है जिस तरह आप केवा कि ज्वार वे गयो, बाजरा वे गयो, मक्का वे गयो, लोबिया वे गयो, अणा सबरी किसान भाई लोग ने बुवाई करनी चाहे तो अपना पशु जो है वे भी व्यवस्थित रूप पूर्व चारो जो है पर्याप्त मात्रा में वना ने मिलेगा,
1: हाँ,
0: और वे भी हरा भरा रहेगा सा।
1: सही बात है। और हाथ ते बात करा भिंडी री फसल ली तो वन में पीत शीरा मोजेक रोग और सफेद मक्खी रे रोकथाम रे लिए डाइमिथोइड 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाइन छिड़काव करनो है सा।
0: बिल्कुल सा। और अभी देखो अनिल महीने आप पशुपालन री बात करा और
1: आधारित
0: जानकारी जो है किसान भाई बहना ने देवा कि देखो अब्बार जो है तावड़ो घणो पड़ी रहो है।
1: सही बात
0: और
1: है।
0: तेज गर्मी में पशुओं रे स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पे सीधो असर पड़े है।
1: सही कह रहे हो सा।
0: तो अणी वास्ते आपने वना पशुओं ने पूर्ण रूप लूम वंचाव राखनो है।
1: हाँ,
0: कि आपने जो पाक्या तका शेड है
1: वना
0: ने घना छायादार पेड़ा रे नीचे राखना है, शेड री छता पे घास या फूसरी या गीली बोरियां डालनी है, ताकि कई वेगा कि जो ऊपर

0: जो तापमान है वो अंदर तक नहीं जावे और अंदर थोड़ा सो कम रहेगा सा।
1: सही बात है। और देखो सर, सज्जू भाई सर जेते बात करा आहार और पानी दी, तो पशुओं ने दिन में कम कम 3-4 बार साफ और ताजा पानी पिलानो चावे। हरा चारा की उपलब्धता वणाई रखनी है। यदि हरो चारो कम है तो तूड़ी या सूखा चारा ने रात भर भिगोइन खिलानो है। पानी में थोड़ो नमक और गुड़ मिलाई देव, पशुआ में ऊर्जा बनी रहे और डिहाइड्रेशन नी वेवे।
0: बिल्कुल सा। और जिते देखो टीकाकरण की बात करा तो हाँ भाई सा, हर बार कणी भी प्रकार रो कई भी बीमारी जैसी वे ये तो आपने अना पशुआ रे महीने टीकाकरण जरूर कराणो। मानसून आवो पहला जो पशुआ रे कई वेवे की गला रे महीने गलगोटू नाम और लंगड़ा बुखार जैसी शिकायत हुई जावे, अणी तरीका री गंभीर बीमारियों वे ग्रसित वे जावे।
1: सही कह रहे हो
0: भाई। तो आपने कई करनो है कि मानसून आवो पहला समय पहला आपने अन्नो टीकाकरण कराई लेनो है।
1: हाँ।
0: ताकि जो आपना मवेशी जो है वे पूर्ण रूपों स्वस्थ रहे वे सा।
1: सही बात है। और हाथ ते मुर्गी पालन की जटे अभी अभार जानकारी दी थी सी।
0: हाँ,
1: तो देखो सा मुर्गिया में भी शेड में हवा रो वेंटिलेशन सही रखनो है। पानी में ग्लूकोज या विटामिन सी रो मिश्रण देनो है ताकि गर्मी रो तनाव कम वे सके। और देखो सा ये सब छोटी छोटी बात अगर किसान भाई ध्यान रखेगा तो निश्चित रूप आप ही कह सका कि खेती बाड़ी और पशुपालन संबंधित जो भी आय है मुनाफो है वनों वही ज़्यादा ज़्यादा लाभ ले सकेगा। और सज्जू भाई साहब देखो सर जानकारी रे सिलसिला ने तो यूं ही रखांगा बरकरार। और आप कहो तो अपने कार्यक्रम में माध्यम एक और मन भवन राजस्थानी लोकगीत अपने किसान मैंने सुनावा नहीं सर।
0: हाँ सर।

0: तो देखो सजू भाई साहब, यो तो सुनियो आपकी मन भावन राजस्थानी लोकगीत।
1: हाँ सर।
0: और देखो सर, अबे टाइम वही रो है अपने कार्यक्रम में योजना रो।
1: हाँ
0: तो देखो सा, अनमे आज आप ही अपने किसान भाई ने कड़ी योजना की जानकारी दे दिया सा।
1: तो देखो सा कि ले चला किसान भाई लोगों ने योजना की दुनिया में और हाँ। करामा आज बनाऊ जानकारी की प्रधानमंत्री तारबंदी योजना जो है
0: हाँ हाँ।
1: बनी री जानकारी करामा। तो देखो राजस्थान में मुख्यमंत्री कृषि जो कृषक साथी योजना है बड़ी रे महीने आवा वाली तारबंदी योजना जो है जिन्हें सामान्यतः प्रधानमंत्री तारबंदी योजना रे नामो भी जानियो जावे है। तो किसान रे वास्ते एक बहुत ही बढ़िया लाभकारी योजना है। अणी योजना रो मुख्य उद्देश्य री जटे बात करा भावना भाई सा, तो किसान भाई लोगों ने आपा बतावा कि किसान भाईयारी फसला ने नील गाय है, आवारा पशु है, जंगली जानवर है, अणो वेवा वाला जतरा भी नुकसान जो है तो ये तारबंदी करी ने वणियो वंचाणो है सा।
0: सही बात है।
1: अणारी किसान भाई लोगारी जो फसला है
0: हाँ।
1: अणा फसला ने पूर्ण रूपो वंचावणी है सा।
0: सही बात है। देखो सा, योजना रे मुख्य उद्देश्य री बात करा तो देखो सा, आप जटे सजू भाई साहब बार बात की थी कि खेता में खड़ी फसला ने आवारा पशु अक्सर बर्बाद कर देवे।
1: हाँ,
0: जण्यो किसानारी मेहनत और लागत दोई डूब जावे और व्यक्तिगत रूपो पूरा खेत री तारबंदी करनो छोटा और सीमांत किसानारे वास्ते आर्थिक रूप कठिन वेवे। और सरकार अणी योजना रे माध्यमों तारबंदी री लागत पर सब्सिडी अनुदान प्रदान करे ताकि किसान भाई अपने

0: शेताने सुरक्षित राख सके सा।
1: बिल्कुल सा। अनिरे महीने अनुदान री राशि री जटे आप बात करा तो योजना रे महीने अलग अलग श्रेणिया रे वास्ते अनुदान री दरा जो है वे भी निर्धारित रहे। जिस तरह की लघु और सीमांत किसान री बात करा तो ऐसा किसान ने तार बंदी री लागत रो 60% और अधिकतम 48,000 रुपया जो कि कम है।
0: हाँ
1: वन वो अनुदान दियो जाई रो है।
0: सही बात।
1: लारे लारे जटे सामान्य किसान अगर है और हमारे अन्य किसान री लागत रो 50% या अधिकतम 40,000 रुपया है तो वे भी अनुदान मिल रहे है। यो अनुदान अधिकतम 400 रनिंग मीटर री तार बंदी रे वास्ते देवेगा सा।
0: सही बात है। और देखो सा हाते आते सर जो भाई सा जानकारी दा पात्रता री शर्ता री।
1: हाँ सा।
0: तो योजना रो लाभ लेवा रे वास्ते कुछ बुनियादी शर्ता किसान मायने पूरी करनी अनिवार्य है। समो पहली बात करा भूमि रे सीमा री तो व्यक्तिगत किसान रे पास कमो कम 1.5 हेक्टर लगभग 6 बीघा कृषि भूमि एक ही स्थान पर वेणी चावे। हाथे हाथे बात करा समूह में आवेदन री तो अगर किसान ने पास 1.5 हेक्टर भूमि नहीं है या पचे यूँ कह सका दो या दो यूँ अधिक किसान मिले समूह में आवेदन कर सके। बस शर्त है कि वनारे पास कुल मिले 1.5 हेक्टर या वणियों अधिक भूमि वेणी चावे। हाथे हाथे बात करा पिछला लाभ री तो जनी भूमि पर पहली यानी योजना रो लाभ लीधो जाई चुक्यो है वन पर दोबारा आवेदन नहीं कीधो जाई सके सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो सा कि अनिरे महीने आवेदन करता समय बहुत ही ध्यान रखवारी बात है कि दस्तावेज कसा कसा चावे।
0: हाँ।
1: तो अनिरे महीने किसान भाई लोग और भाई बेनारा अनार सबरे आधार कार्ड भी गया।
0: हाँ।
1: आधार कार्ड खेतरी जा जमाबंदी नकल है जन्ने आपा खसरा संख्या केवा जा 6 महीनाओं अधिक पुरानी नी वेणी जावे। बैंक पासबुक री फोटोकॉपी लेनी है। लारे लारे किसान रो लिखियो तो को एक शपथ पत्र लेनो है। और आवेदन री प्रक्रिया जो है कि योजना रे वास्ते आवेदन पूरी तरीका ऑनलाइन वेगा। तो किसान भाई लोग स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पे जाइने आवेदन करी सकी रिया है या पछे कोई नजदीकी ई मित्र वालों कोई है तो वणियो सलाह लेने वणारी सहायता लेने आप यो काम कर सक्रिया हो सा।
0: सही बात है। देखो सा आवेदन रे बाद कृषि विभाग रा जो अधिकारिया द्वारा खेत रो सत्यापन की दो जावे। सत्यापन रे बाद किसान री तारबंदी रो काम शुरू करवा री अनुमति मिले और काम पूरो वेवा पर बिल प्रस्तुत करवा रे बाद अनुदान राशि सीधा किसान रे बैंक खाता में भेज दी जावे। अब आंडे वास्ते कुछ छोटी छोटी बात किसान मैंने ध्यान रखनी है कि देखो सा पहले आओ पहले पाओ आणि योजना में बजट सीमित वेवे आंडे वास्ते आवेदन प्राथमिकता रे आधार पर स्वीकार किया जावे। हाथे ते बात करा गुणवत्ता री तो तारबंदी में केवल कटीला तार और लोहारा एंगल या सीमेंट रे पोल रो ही उपयोग की दो जानो चावे। लकड़ी रे खंबा पे अनुदान नहीं मिले। हाथे हाथे बात करा विभागीय अनुमति री तो बिना पूर्व स्वीकृति रे किदो लगो कार्य पर अनुदान नहीं मिले। अन्य वास्ते प्रशासनिक स्वीकृति रे बाद इस काम शुरू करनो चावे। तो सरजू भाई सा कुल मिले ना अपने तो यो इस केणो है कि या जो योजना है न केवल फसल सुरक्षा सुनिश्चित करे बल्कि अपने किसान भाई ने मानसिक चिंताओं भी मुक्त करे और अन्य हाथे हाथे भी अपने कृषि उपज में सुधार कर सके सा।
1: बिल्कुल सा। तो देखो बहुत ही बढ़िया जानकारी जो है आपा किसान भाई लोगों ने दीदी सा।
0: हाँ हाँ।
1: और देखो सा कि अबे पाचा ले चलना रे गीत गुंजन री दुनिया में।
0: सही बात है।
1: करवा सा मनोरंजन।
0: हाँ तो आप इशारो है कि एक मनभावन राजस्थानी लोकगीत और आपने कार्यक्रम में माध्यम सुनावा सा।
1: हाँ सा।

0: तो भावना भाई सा,
1: हाँ सा,
0: देखो सा बहुत ही प्यारो सो राजस्थानी गीत हुनायो सा।
1: हाँ,
0: और अभी देखो सा कि जानकारी थी दुनिया ने आगे बढ़ावता तका किसान भाई लोगा ने जानकारी अभी या करावा कि किसान भाई लोग जो है किसान घर है उपयोगी।
1: हाँ,
0: तो किसान घर री जटे आप बात करा तो यू है फार्म हाउस।
1: हाँ,
0: तो ग्रामीण जीवन और आधुनिक प्रबंधन रो एक बेहतरीन केंद्र वे तो ये केवल रेवारी जगह नहीं बल्कि खेती पशुपालन भंडारण रे वास्ते एक एकीकृत इकाई तरह काम करवा वालों है।
1: हाँ,
0: यो उपयोगी किसान घर रे बारे में बहुत ही बढ़िया है कि मतलब किसान

0: घर री जो अवधारणा और महत्व रे बारे में जानकारी देवे है।
1: सही बात है। देखो सर, सरजू भाई सर जिते बात करा किसान घर रा मुख्य उद्देश्य री, तो किसान ने वंडे कार्य क्षेत्र यानी खेत करीब रखे आणि फसला री निगरानी, पशुवारी देखभाल और कृषि उपकरणों की सुरक्षा में आसानी वेवे, या एक सुव्यवस्थित किसान घर व्यवहार समय री बचत वेवे और कृषि प्रबंधन की कार्य क्षमता भी बढ़ जावे सा।
0: बिल्कुल सा। और ये क्यों आदर्श किसान घर री संरचना है कि देखो, एक उपयोगी किसान घर रो मुख्य रूप तीन भागा में बांटियो जा सके है। आवासीय भाग अटे किसान रो परिवार निवास करे है, अणिरे महीने हवा रोशनी रो उचित प्रबंधन मेणो चावे। पशुशाला री बात करा तो यो जो है घर थोड़ो सो हटी ने लेकिन पास में मेणो चावे, अटे पशुआ रे वास्ते साफ फर्श, हवादार खिड़कियां और पानी री ओदी वेणी जरूरी है।
1: सही बात है। और हाथ हाथे भंडारण और कार्य क्षेत्र की बात करा तो बीज, खाद और कृषि उपकरण जिस तरह की हल स्प्रेयर ने रखवारे वास्ते एक सुरक्षित गोदाम रो मेणो अनिवार्य है। और देखो सर, में कई कई आधुनिक तकनीका रो इस्तेमाल वे रो है, किस तरह की उपयोगिता है, तो आज के समय में एक किसान घर ने तकनीकी रूप सक्षम बनाना बहुत ही लाभदायक है। सबो पहली बात करा सौर ऊर्जा री, तो घर की छता पर सोलर पैनल लगाई बिजली जरूरता ने आप आसानी पूरो कर सका, अनु न केवल घर में रोशनी रहेगा बल्कि खेत में पंप चलावा में भी मदद मिलेगा। हाथे हाथे बात करा वर्षा जल संचयन री, तो घर छतों गिरवा वाला पानी ने एक टांका या टैंक में इकट्ठो करें सिंचाई या पचे घरेलू कार्य में उपयोग कर सका सा। और हाथे हाथे जानकारी दा जैविक कचरा प्रबंधन री, तो घर और पशु शालाओं जो निकलवा वाला कचरो है वणियों बायोगैस प्लांट या वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद यूनिट बनाई जा सके, जणियों खाणों पकावर लिए गैस और खेत लिए खाद मुफ्त में मले सा।
0: बिल्कुल सा। और जटे किसान घर रे आर्थिक लाभ री बात करा भावना भाई सा, तो उत्पादकता में वृद्धि वेगी, खेत पे रेवा वाला जो फसला री सिंचाई और कीट नियंत्रण रो समय प्रबंधन वेजबावे। लारे लारे सुरक्षा री बात करा तो आवारा पशु और चोरी री घटनाओं फसल और उपकरण रो वंचा वेजावे। और किसान घर रे आसपास री खाली जगह में किचन गार्डन नर्सरी विकसित करीने सब्जियां पौधा उगाई सके है, अणा ने बेच नवे अतिरिक्त आय प्रदान करी सके है।
1: सही बात है। देखो सर, जैसे आप ये बात करा कि राजस्थान ने संदर्भ में अंडी उपयोगिता री, तो राजस्थान जैसा राज्य में जटे खेत बहुत ही बड़ा वेवे वटारी ढाणी या किसान घरी परंपरा काफी पुरानी है। अटे घरी बनावट में स्थानीय सामग्री जिस तरह की पत्थर और मिट्टी रो उपयोग की दो जावे जो कि गर्मियां में घर ने ठंडो रखे। सरकार भी अबे कृषि उद्याना ने और फार्म हाउस निर्माण रे वास्ते कई सारी योजना रे तहत प्रोत्साहन राशि दे रही है। तो देखो सर, कुल मिले सरजू भाई साहब आपने तो यो इस कहना है कि एक अच्छी तरीको बनायो गयो किसान घर खेती रे वास्ते एक लाभप्रद व्यवसाय बनावा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रही है। यो किसान रे श्रम ने सम्मान देवे और इन्हें आत्मनिर्भर बनावा में मदद करे, और अगर इन्हें आधुनिक वैज्ञानिक तरीका रे साथ जोड़ियो जावे तो यो ग्रामीण विकास री एक मजबूत कड़ी साबित वे सके सा।
0: बिल्कुल सा। और देखो कि बहुत बढ़िया जानकारी रे ला रहे, तो देखो कि आपा कई यानी कार्यक्रम ने लेने आवा।
1: हाँ।
0: तो नरे हरा गीत भी हुनावा, जानकारी भी हुनावा, पर देखो किसान भाई लोग गरो अगर मनोरंजन नहीं करावा तो मन मजो भी नहीं आवे सा।
1: सही बात है सा। तो देखो सा, जानकारी रो सिलसिलो अधूरो रही जावे।
0: हाँ सा।
1: तो आप ही आप रे इशारो समझ रही हूँ सरजू भाई सा, और आप चाह रहे हो कि आपने किसान मैंने एक और मनभावन राजस्थानी लोकगीत अपने कार्यक्रम में माध्यम सुनावा।
0: हाँ सा।
1: और आप ही भी गीत रो आनंद लाने सा।
0: हाँ सा।

0: तो भावना भैसा
1: हाँ हाँ
0: तो देखो कि आप बात करी रहा हा तो वाता रे लारे लारे आप देखो राजस्थानी गीत भी हुनायो और आज री बात री जटे जानकारी ने आगे बढ़े ने बतावा कि देखो आज जो है 16 मई है
1: हाँ हाँ
0: और आज विश्व और भारत रे स्तर पे कई महत्वपूर्ण दिवस मनाया जावे है।
1: सही बात है सा।
0: तो अनाने वाला प्रमुख दिवस री जानकारी भी दे दा सा।
1: हाँ हाँ
0: तो देखो कि सिक्किम स्थापना दिवस है तो भारत रिवासी एक ऐतिहासिक दिन है
1: हाँ
0: क्योंकि 16 मई 1975 में सिक्किम आधिकारिक तौर पे भारतीय संघरो 22वो राज्य बन्यो हो
1: हाँ
0: और पहला सिक्किम में राजशाही हाँ तो अणिरे महीने जनपद संग्रह रे बाद में भारतीय संविधान रा 36वां संशोधन रे माध्यमो अने पूर्व राज्य रो दर्जो मिल्यो हो
1: हाँ हाँ
0: अणिदन राज्य में सार्वजनिक अवकाश वेवे है और सिक्किम रे सांस्कृतिक विरासत रो जश्न भी मनायो जावे है।
1: सही बात है। और देखो सा हाते हाते सजू भाई सा एक और जानकारी दूं कि आज अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी है और यो दिवस हर साल यूनेस्को द्वारा मनायो जावे
0: हाँ
1: और अंडो उद्देश्य है विज्ञान संस्कृति कला शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश की भूमिका ने रेखांकित करनो। और देखो जटे महत्व री बात कर यहाँ तो 16 मई 1960 ने भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर रो पहलो सफल संचालन की दो गयो और अनीस याद में यो दन चुनियो गयो अनी दन चिकित्सा संचार और ऊर्जा रे क्षेत्र में प्रकाश आधारित तकनीका रे महत्व पर जोर दिदो जावे सा।
0: बिल्कुल सा। और यो देखो राष्ट्रीय डेंगू दिवस
1: हाँ
0: तो
1: हाँ।
0: भारत रा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हर साल 16 महीने राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनायो जावे है।
1: हाँ हाँ।
0: जणी रे उद्देश्य री बात करा तो लोगा ने डेंगू रे प्रति जागरूक करनो है अणी रे प्रसार ने रोकवा रे वास्ते निवारक उपाय ने बढ़ावो देनो है। लारे लारे जरूरी कदम जो है कि अणिदन मानसून नो ठीक पहला आवे है अणी वास्ते लोगा ने पानी जमा नी वेवारे वास्ते मच्छरों वंचावरे वास्ते शिक्षित करवा रो सही समय वेवे है।
1: सही बात है। और देखो सा या तो वेगी जानकारी सा और सजू भाई सा आपको तो एक और मनभावन राजस्थानी लोकगीत अपने कार्यक्रम में माध्यम किसान मैंने सुनावा नहीं सा।
0: हाँ सा।

0: तो भावना भाई सा,
1: हाँ सज्जू भाई
0: देखो सा, आज आपने खेती और घर कार्यक्रम में अत्री बढ़िया बढ़िया तो आप जानकारी कराई किसान भाई लोगों ने, और लारे लारे बहुत ही प्यारा सा राजस्थानी गीत सुनाया सा, और अणी तरीकों जो आपने कार्यक्रम रे महीने आनंद आयो सा,
1: सही
0: तो देखो
1: है।
0: सब जना जो है बहुत ही खुश है सा।
1: सही बात है, और देखो सा सज्जू भाई सा जते मन पसंद है और सब चीजा हो चाली रही है, पर देखो साहब एक जो घड़ी री टिक टिक है वह अपने चालवारो इशारो कर रही है।
0: बिल्कुल सा,
1: तो क्यों नहीं आप ही अपने किसान भाइयों अपने कार्यक्रम आज्ञा ला सा,
0: हाँ सा,
1: और चाला सा, जय जवान
0: जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती और घर, आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

संगीत लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त चंचल। तेरी धड़कन ही मेरी जिंदगी का साज है, तू मेरी मोहब्बत नहीं मेरी जिंदगी का एहसास है। धड़कन फिल्म का ये गीत है, उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें हैं, नदीम श्रवण का संगीत है।

अगला गीत जो जीता वो सिकंदर, इस फिल्म का सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें हैं, जतिन ललित का संगीत है। कोई नशा बनकर वजूद पर छा जाता है, सामने आते ही होश ही नहीं रहता।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। अगला गीत आपका हम सुनवाएं, उससे पहले कहेंगे मेरी आंखों का हर एक ख्वाब सिर्फ तुम हो, मेरी खुशियों का हर एक जवाब सिर्फ तुम हो। श्रोताओं, अगला गीत सिर्फ तुम इस फिल्म से सुनवा रहे हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र के साथ। अगला गीत खामोशी फिल्म से है। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज है, जतिन ललित का संगीत है। इश्क वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, इश्क वो है जो खामोशी से निभाया जाए।

रंगीला फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आशा भोंसले की आवाज़ है, ए आर रहमान का संगीत है। एक चेहरा है जो आँखों में बसा रहता है, एक तसव्वुर है जो तन्हा नहीं होने देता।

कभी किसी के हंसने से दिल को राहत मिलती है, तो कभी चुप रहने से दुनिया वीरान लगने लगती है, और कभी लगता है कि कुछ ना कहो, बस कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है। श्रोताओं, अभी आपने सुना 1942 अ लव स्टोरी का गीत, किशोर कुमार की आवाज़ थी। अपनी जैसी कोई तस्वीर बनानी थी मुझे, मेरे अंदर से सभी रंग तुम्हारे निकले।

भाई अब ये मत बोलना कि अभी आए अभी जाते हो, जल्दी क्या है, दम ले लो। अरे भाई हमें हम आपको नहीं छोड़ेंगे।

आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल फिल्म संगीत यहीं समाप्त करते हैं। मगर कब न जाने ये फिल्म संगीत प्रस्तुत किया आपकी रेडियो दोस्त चंचल ने। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं पहले समाचार। संध्या फिर रात्रि 9 बजे सुनेंगे न्यूज़ एट 9।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्व

0: विद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे

0: स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड

ब्रांड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: These stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत में चुनिंदा गजलें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत में चुनिंदा गजलें। ये गजल थी पंकज उधास की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं अगली गजल चंदनदास की आवाज़ में।

इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं अगला कार्यक्रम अखिल भारतीय संस्कृति पत्रिका।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: तारंगा तेरी याद में,
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है, कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जी.डी. माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकुड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सैनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए

सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था। इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
2: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली
1: जूली आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्ज
2: मस्त बहार।

फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद, मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार।

0: थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966, निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं, और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: तू न रोना के तू है

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती है।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर मां के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में मां यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे परवाना आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। तो तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो?
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से अपनी

डेढ़ उम्र में मां बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में मां पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक।

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में मां का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी मां का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की मां ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है। वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो मां को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमीन पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं।
0: फिल्म एबीसीडी 2।
2: जब जब मुझे पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में मां का किरदार।
3: मेरे पास मां है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास मां है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं। क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो एलबी लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नयन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नयन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना ऐसा करके बोलता, मैंने मेरे हाथ में किधर है
1: जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूं, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनते हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से ही।
1: संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरु के सुपुत्र है। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विथ मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one Gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various Gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
1: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरु अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
2: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पियासे, द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, द्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: That was राग दुर्गा। Now you will listen to राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, द्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag

ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में। समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhumi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the